पंच कु आत्मा वस करे ता तीर्थ करे निवास। मनमुख ओ मन मुग्ध है सोजी किशु न पाए हर का नाम न बुझई अंत गया पछताए। यो मन कासी सब तीर्थ सिमरत सदगुर दिया बुझाए। हर सर तीर्थ ते संग रह जिन हर हिरदे रहा सुमाए। नानक सदगुर मिले हुक्म बुझया एक वस्या मन आए। जो तु पावे सब सच है सच्चे रहे सुमाए। गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई। दूजे पाए जेता पड़े पड़त गुणत सदा दुख होई। हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई। हर रस रसना चाख तू तामन निर्मल होई। अरहाओ सदगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिसना भूख न होए। नाम निधान पाया पार कर जाए न कोए। कथनी बदनी जे करे मनमुख बूझ न होए। गुरमती कट चानना हर नाम पावे सोए। सुन शास्त्र तू ना बुझी ता फिरे बारो बार। सो मूर्ख जो आप ना पछाणई

धीरज धर्म गुरमत हर पाया नित हर नामे हर स्यों चित लावे अमृत बचन सगुर की बाणी जो बोले सो मुख अमृत पावे निर्मल नाम जित मैल न लागे गुरमत नाम जपे लिव लावे नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया से पाहीन मुए मर जावे आंद मूल जग जीवन दाता सब जन को अंध कर।

अंतर मैल न उतरे हो में बिन गुरबाजी गारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा थारी। होड़ मदे को विरला सेवक होर सगले ब्योहारी हरहाओ सात वेद सिमर सब शुद्ध तब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्तन को उपावे मन वेखो कर बिचारी अर सरमजन कर इस नाना प्रम आए तर सारी। अनक सोज करे दिन राती बिन सतगुर अंधारी धावत धावत सब जगत आयो अब आए हर द्वारी। दुर्मत मेट बुद्ध परगासी जन नानक गुरमुख तारी गुजरी महला।

कल्याण आनंद रूप होई है। उबरे बाल गोपाल हरहाओ मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार। कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवां माता पिता भाई सुध बंधप।

साध संग नानक दर्श पायो बिनसो सगल नेहोरा गुजरी मोहल्ला पंजवा आल जाल प्रमोत जावे प्रसे तीरंग लाई मन को ए उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जे भेटे टूटे माया बंद बिसर ना कब हूं जाई हराओ करत करत अनकबो पाती

आओ साध संग उधार एहो मन आढ़ पैर आराध काम क्रोध अहंकार बिनस मिटे सगल उपाद अटल अछेद अपेद स्वामी सरणता की आओ चरण कमल आराध हृदय एक स्यों लिवलाओ पार ब्रह्म प्रादया तारी बग

आराध श्री तर सबल मूर्त करण कारण जोग गुण रमन सरमन अपार महिमा फिर ना होत बियोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मिटंत सिमरण

पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा ना हो रहाओ। सतगुर सेव लगे हर चरणी वडे भाग लिव लागी। कबल प्रकाश पए सासंगे दुरमत बुद्ध त्यागी। आठ पैर हर के गुण गावे सिमरे दीन दयाला। आप तरह संगत सब उधर बिन से सगल जंजाला। चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ। शरण प्रयो नानुता तुमरी दे राख्यो हर हाथ। गुजरी अष्टपदियां महला पहला तार पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक नगरी पंच चोर बसियल बबरजत चोरी तावे। त्रेद समार रखे।

भाग परे गुर शरण तुम्हारी, मैं अवर ना दूजी पाई। आप तब एको एक पुकारो, आद जुगा सिखाई। ऐ जी रखो पैज नाम अपने की, तुझ गी स्यों बने आई। कर कृपा गुर दर्श दिखावो, हम में शब्द जलाई। ऐ जी क्या मांगो, किस रहे ना दिसे।

नीच ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नामृते केवल बैरागी सोग बिजोग विसर्जित रोग भाई रे गुर कृपा ते भगत ठाकुर की सदगुर वाक हिरदे हर निर्मल ना जम कान न जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवे प्रसंग जो तु पावे सहज हरी बिन हर नाम बिरथा जग जीवन हर बर नेफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नहीं घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्राभक्ष न मिटे नित नित चढ़े सवाई।

क्रोध हरन मद मोह दैन मुरार मन मकरंद जन्म मरण वार धरणी थर पत रख परमानंद जलत अनक तरंग माया गुर ज्ञान हरिद मंत छेद अंग बुद्ध करणा मैं चिंत मेट पुरख अनंत

सबना उपावा सिर उपाओ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल सांत वसे, जप हृदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा, ए मन गुर की सिख सुन, हर पावे गुणी निधान, हर सुखदाता मन वसे, होमे जाए गुमान, नानक नदरी पाई है, ता अनदन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पवित्ता, अंदरों कपट विकार गया, मन सहजे जित्ता, ते जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता, अनदन हर के गुण रवे, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मित्ता, श्लोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कहिए, जी अनदिन घर ले वलाए, सदगुर पुछे सच संजम कमावे, होमे रोथ जाए, हर गुण गावे गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मिलाए, इस युग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे होमे मेट समाए, नानक तिसनु मिलया, सदा सुख पाईए, जे अनदिन घर नाम ते आए, महला तीजा, अंतर कपट मन अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए, कपट कीते हर पुख ना पीजे, नित वेखे सुने सुभाए, दूजे पाए जाए जग प्रबुद्ध, बिख माया मोह सुवाए, इत कमाणे सदा।

नानक गुरमुख मिल रहे जप हर नामा उर तार। श्लोक महला तीजा गुरमुख ध्यान सहज तुन उबजे सच नाम चित लाया। गुरमुख अनदन रहे रंग राता हर का नाम मन पाया। गुरमुख हर वेख गुरमुख हर बोले गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे तेमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनु कर्म होवे तुर पूरा तिन गुरमुख हर नाम ते आया। महला तीजा सतगुर जिन्हें ना से

आव तिस नू आखीए जे गुण दाता मत तीर, वाव तिस नू आखीए जे समय रहा समाए, वाव तिस नू आखीए जे दिंदा रिजक समाहे, नानक वाव इको कर सहलाईए जे सतगुर दिया दिखाए। महला तीजा वाव गुरमुख सदा करे मानवक मरे बिख खाए, ओना वाव ना पावई दुखे दुख विखाए, गुरमुख अमृत पीवना वाव करे लिवलाए। नानक वाव करे से जन निर्मले, तिर पावन सोजी पाए पौड़ी, हर के पाणे गुर मिले सेवा भगत बनीजे, हर के पाणे हर मन वसे सहजे रस पीजे, हर के पाणे सुख पाईए हर लाह नित लीजे, हर के तख्त बहालीए निरकर सदा वसीजे, हर का पाणा तिनी मन्या जिन्ना गुरु मिलीजे। श्लोक महला तीजा वाह वाह सेजन सदा करे जिनको आपे दे बुझाए, वाह वाह करत्या मन निर्मल होवे होमे विचों जाए, वाह वाह गुरसिख जो नित करे सो मन चिंदिया फल पाए, वाह वाह करे से जन सोने हर तिनके संग मिलाए, वाह वाह हिरदे उचरा मुखो पी वाह वाह करे ओ, नानक वाह वाह जो करे आओ तन मन तिनको दे ओ। महला तीजा वाह वाह साहिब सच है अमृत जा का नाओ, जिन सेव्या तिन फल पाया हों तिन बल हारे जाओ, वाह वाह गुणी निधान है जिसनु दे सोखाए, वाह वाह जल सल भरपूर है गुरमुख पाया जाए, वाह वाह गुर सिख नित सब करो गुरपूरे वाह वाह पावे, नानक वाह वाह जो मन चित करे तिस जम कंकर नेड़ न आवे पौड़ी, हर जीव सच्चा सच है सच्ची गुरबाणी, सगुर ते सच पछाणीए सच सह समाणी, अनदन जागे ना सवे जागत रहन विखाणी, गुरमती हरस चाखिया से पुन पराणी, बिन गुर किने ना पायो पच मुए अजाणी। श्लोक महला तीजा वाह वाह बाणी निरंकार है ते जेवड़

का बोलिया प्रवान है दरगह पवे थाए भगता तेरी टेक अरते सच नाए जिसनु हुए किरपाल तिसका दुख जाए भगत तेरे दयाल ओना मेर पाए दुख दर्द वड़ रोग ना पोगे तिस माए भगता इहो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रहन इको एक त्याए पीवत अमृत नाम जान नामे रहे अघाए श्लोक महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनु विसरे नाओ नानक अनदिन बिरपते ज्यो सुन्ये कर काओ महला पंजवा प्री मिलावा जाथिये साई सुहा वीरुत कड़ी मोहत न विसरे नानक रविये नित पौड़ी सूर वीर वरियाम किने ना होड़िये फौज ताणी हाठ पंचा जोड़िये दस नारी अवधूत देन चमोड़िये जिन जिन लैन रलाए इहो इना लोड़िये तै गुण इनके वस किने ना मोड़िये परम कोट माया खाई कौ कित बिद तोड़िये गुरपूरा आराध बिखमदल फोड़िये हाँ इस अगे दिन रात रहा कर जोड़िये श्लोक महला पंजवा केलबग सबे उत्तरन नीत नीत गुण गाओ कोड़ केले सा उपजे नानक विसरे ना।

आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया, मिटया अंधेरा दुख नाठा, आम्यों हरस चोया, जहां देखा तहां स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, जान कहे नानक सतगुर मिलाया।

निर्गुण निबाणी अनाथ बिनवै मिलो प्रभ कृपा निधे। प्रम पीत खोइये सहज सोइये प्रभ पलक पेखत नव निधे। गृह लाल आवै महल पावै मिल संग मंगल गाइये। नाक पैम पै संत सरणी मोहे दर्श दिखाइये। संतन कै प्रसाद हर घर पाया राम। इश पुनी मन शांत तप्त बुझाया राम। सबला सो दिनस रहने सुहावी अंध

गुण संपूर्ण प्रम पीत हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सगिए हर नाम नित नित नित जपे हर नार सुहागणे।

या राम सुग सहज आनंद विनोद सदगी गुण गोपाल नित गाई है। पज साध संगे मिले रंगे बौड़ जोन ना ताई है। गय कंठ लाए सह सुखाए

कोड़ अपराध परे ई तेरे चेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कले से पंजना शरण तेई रख लेहो मेरी सर्व वै निरंजना सुनत पिखत संग सब कै

से पासे ती कर जाही। नरपत जान गयो सेवक सियाने राम, सर पर विछड़ना मोय पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला का अस्तित पाईए, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाईए। हौ हौ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने, बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने।

सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, नाम पदार्थ पाई है, अचिंत वसे मन आए, जन्म मरण दुख कटी है, होमे ममता जाए, उत्तम पदवी पाई है, सच्चे रहे सुमाए, नानक पूर्व जन को लिखया, तेना सतगुर मिलया आए, महला तीजा, नाम रता सतगुरु है, कल युग भोयथ होए, गुरमुख होवे सो पार पवे, जिन्ना अंदर सच्चा सोए, नाम सुमाले नाम संग्रह, नामे ही पत होए, नानक सतगुर पाया, कर्म प्राप्त होए पौड़ी, आपे पास आप तात है, आप की तोन कंचन, आपे ठाकुर सेव के आपे, आपे ही पाप खंडन, आपे सब कर भोगवे स्वामी,

तिसरा कर सार गुण मंडे कर सील क्यों सर्व मास आहार गुरमुख पाइये नानका खादे जाए विकार मर्दाना पहला काया लहान आव मद मजल तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पी लाए जमकाल एत मद पीते नानका बहुते खटिए विकार ज्ञान गुण सारा मंडे पौ मास आहार नानक यो पूजन सच है सच नाम आधार काया लहन आव मद अमृत की तार सत्संगस्तों में लाप होए लिप कटोरी अमृत परी पी पी कटे विकार पौड़ी आपे सुन नर गण गंधर्बा आपे खड़ दर्शन की बाणी आपे शिव शंकर महेशा आपे गुरमुख

राम राम करता सब जग फिरे, राम न पाया जाए। अगमे गोचर अत वड्डा, अतुल न तुले आ जाए। कीमत कने न पाईया, किते न ले आ जाए। गुर कै शब्द पेदया, इन बिद वसया मने आए। नानक आप अमयो है।

हिंदू मूले पूले अखुट्टी जाही, नारद कया से पूज कराही, अंधे गुंगे अंध अंधार, पाथर ले पूजे मुग्ध गवार, वे जा आव डुबे तुम कहां तरनहार पौड़ी, सब क्यों तेरे वस है तू सच्चा साहो, भगतर ते रंग एक कै पूरा वे साहो, अमृत भोजन नाम हर राज्य राज जन खाहो, सब पदार्थ पाइयन सिमरन सच लाहो, संत प्यारे पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहो, श्लोक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए, जे को मूर्ख आपो जाने अंधा अंध कुमाए, नानक हुक्म को गुरमुख बुझे जिसनु कृपा करे रजाए, महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए, जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए, ते जोगी की नगरी सब को वस पेखी जोग न होए, नानक ऐसा विरला को जोगी जिस कट प्रगट होए पौड़ी, आपे जंत उपायन आपे आधार, आपे सूखम पालिए आपे पासार, आप एकाती होए रहे आपे वड़ परवार, नानक मंगे दान हर संतारे नार, होर दा तार ना।

हो पिरो विछोड़ी, सुपने आया पी गया मैं जल परे यार ओए, आए न सक्का तुझ कन प्यारे तेज न सक्का कोए, आओ सुभागी नींदड़िए मत सो देखा सोए, तय साहब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे, शीश वड्डे कर बैसण दीजे विण सिर सेव करीजे।

आए, निर्मल नाम से मन आए, पर में भूला फिरे संसार, मर जन में जम करे खुवार, नानक सेवड़ भागी जिन घर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन नमसाया, वढ़ांस महला तीजा, हौमे नावे नार विरोध है, दोना वसे एक ठाए, हौमे जो सेवा ना हो वही कामन बिरथा जाए, हर चेत मन मेरे तू गुर का शब्द कमाए, हुक्म मने ता हर मिले ता विचो होमे जाए रखाओ, होमे सब शरीर है, होमे ओपत होए, होमे वड़ा गुबार है, होमे विच बुझ न सके कोए, होमे विच भगत न हो वही हुक्म ना बुझिया जाए, होमे विच जियो बंद है, नाम ना वसे मन आए, नानक सतगुर मिले होमे गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे सच्चे सेव समाए, वढ़ांस महला चौथा कार पहला एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद सेज एक को पव ठाकुर, गुरमुख हर रावे सुख सागर।

नेतन सेव करी हर जन की, जो हर हर कथा सुनाए। तन तन गुरु गुर सदगुर पूरा, नानक मन आस पुजाए। गुर सज्जन मेरा मेल हरे, जित मिल हर नाम त्यावा। गुर सदगुर पासो हर गोष्ट पूछा, कर सांझी हर गुण गावा। गुण गावा नित नित सद हर के, मन जीवे नाम सुन तेरा। नानक जित

सो हर घर सदा संभाले, सो हर घर नाम सदा सदा संभाले, जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जान हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया, वढ़हंस महला पंजवां कार पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबार, अंत नहीं किछ पारा वारा, कोट कोट कोट लख तावे, एक तिल ताका मैल न पावे, सुहावी कौन सो वेला, जित प्रमेला रहाओ, लाख भगत जाको आराध, लाख तपीसर तब ही साध,

अमृतसर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मने लागा, दुख डेरा ठाया, सुख मन में आय बसया, जाम तय फुरमाया, नदर तुद अरदास मेरी जिन आप उपाया, ता मैं कहया कहन जा तुझे कहाया, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, न पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप मनावना, जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूआवना, जो दे सहना मने कहना आख ना ही वावना, वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब उपाय ने आप आपे नदर करे, कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सा मांगे, सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे, किस पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे, नानका जिन नाम मिले कर्म होआ तुर कदे, सब उपाय ने आप आपे नदर करे, वढ़ांस महला पहला करो दया तेरा नाम खाना, सब उपाय गए।

निरकर अवस्था पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पेर रलिया लाजो बन बाला आंदना कंत सवारी हर वर सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामन हारंग राती जा चले सतगुर पाए वढ़ांस महला तीजा गुरमुख सवा पार परा जिस

गुण संग्रह अवगुण विकणे आपे आप शाणे गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चे सदरस तीजे नानक घर की भगत निराली गुरमुख विरले कीजे गुरमुख खेती हर अंतर बीजिए हर लीजे शरीर जमाए राम अपने कर अंदर रस पुंच तू लाहा लय परथाए राम लाहा परथाए घर मन नमसाए।

बीज मन अंदर सत्य शब्द सुखाए, हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड़पा गो राम। गुरमति मन कर वसया सत्य शब्द बैरागो राम, मुख मस्तक भागो सत बैरागो साचर ते विचारी। ना बिना सब जग बौराना सब देखो में मारी, साचे शब्द लाग मत उपजे गुरमुख नाम सुहागो। नानक शब्द मिले पो पंजन हर आवे मस्तक भागो, खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड़िया ई राम। गुरमती हुक्म बूझिए हुक्मे मेल मिलाई राम, हुक्म मिलाई सह समाई गुर का शब्द अपारा। सच्ची वड़ियाई गुर ते पाई सच सवारण हारा, पाओ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई। कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर, हुक्मे रहा सुनाई वढ़ांस महला तीजा। मन मेरिया तू सदा सच समाल जियो, अपने कर तू सुख बस ओए न सके जम काल जियो। काल जाल जम जोए न सके साचे शब्द लिवलाए, सदा सच रत्ता मन निर्मल आमन जान रखाए। दूजे पाए परम विगुति मन मुखमोही जम काल, कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच समाल। मन मेरे अंतर तेरे निधान गए बाहर वस्त ना पाल, जो पावे सो पूंच तू गुरमुख नदर निहाल। गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर घर नाम सखाई, मनमुख अंदले ज्ञान में गुणे दूजे पाए खुवाई। बिरनावे को छूटे नाही साबादी जमकाल, नानक अंतर तेरे निधान है तू बार वस्त ना पाल। मन मेरे जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा, सदगुरु सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा। अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौन दपाई, मन कुमाया मोवे आपे दू संतापे दूजे पद गवाई। होमे मार सच शब्द सुमाने सचर ते अदकाई, नानक मानस जन्म दुलंब है सदगुर बूझ बुझाई। मन मेरे सदगुर सेवन अपना से जन्मड भागी राम, जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम। से जन बैरागी सच लग लागी अपना आप पछाणिया, मत नेचल अत गूढ़ी गुरमुख सहजे नाम खाणिया। एक कामन हितकारी माया मुहे प्यारी, मनमुख सोए रहे अपागे। नानक सहजे सेवे गुर अपना से पूरे वड़पागे। वढ़ांस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सदगुर दिया बुझाई राम। ला लाभ हर भगत है गुण में गुणी समाई राम, गुण में गुणी समाए जिसे आप बुझाए ला भगत सह सारे।

आवण जाना कदे ना चूके। माया मोह प्यारा, माया मोह सब दुख है, खोटा ओवा पारा, खोटे खरे।

दाता आपे बगसे सोई गुरप्रसादी आप गवाई है नानक नाम पल पाई आप करे किसे आखिए होर करना किसु न जाई वढ़ांस मोहल्ला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा व्यापार राम गुरमति हर नामण जिये अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच व्यापार सच व्यापार लगे वड़पागी अंतर बार भगती राते सच नाम लिव लागी नदर करे सोई सच पाए गुर के शब्द विचारा नानक नाम रते तिन ही सुख पाया सच के व्यापार होमे माया मायल है माया मायल परी जय राम गुरमती मन निर्मला रसना हरस पीजे राम रसना हरस पीजे अंतर पीजे सा शब्द विचारी अंतर खूटा अमृत परया शब्दे काड़ पिए पनेहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवीजे नानक नाम रते से निर्मल होर हमे मैल पहीजे पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागे

पाग गए। जो जुग एको जाता जात सत संजम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनु शब्द बुझाए जो जाए पवे घर सरनाई जो हर मत दे साई उपजे होर मत न काई राम अंतरभार एक तू आपे दे बुझाई राम आपे दे बुझाई अवर ना पाई गुरमुख हरस चाखिया दर सचे सदा के सच सचे शब्द सुपाखिया कर्म निज कर पाया सतगुर दे वडाई नानक जो नाम रते सेई महल पायन मत प्रवान सच साई वढ़ांस महला चौथा शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर नाम मेरे मन वसाई राम हर हर नाम मेरे मन वसाई सब दुख विसारण हारा वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा उठत बैठत सतगुर सेव जित सेवे सांत पाई मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई हों जीवा सतगुर देख सरसे राम हर नाम दृढ़ाए जप हर नाम विगसे राम जप हर नाम कमल पर गासे हर नाम नवंग निंद पाई हम में रोग गया दुख लता हर सहज समाध लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसे हों जीवा सतगुर देख सरसे।

ठाकुर मेरे कित मुख तुसा लागी, गुण अवगुण मेरा किशना बिचारिया, बक्सलिया खिन माघी, नौंद पाई वजी वधाई, वाजे अनगल तूरे, कहो नानक मैं वर कर पाया, मेरे लाथे जी सगलब सूरे, सलोक क्या सुनिंदो कूड़, वंजन पवन चुलारिया, नानक सुनियर ते प्रवान, जो सुनिंदे सच तनी, शंत तिन कोल कुमाई, जिन प्रसरवणी सुनिया राम, से सह सुहिले जिन हर गरसना पणिया राम, से सह सुहिले गुणे अमूल जगत उधारण आए, पै बोत सागर प्रचरणा केते पार लंघाए, जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर, इनका लेखा ना गणिया, कहो नानक इस कोल कुमाई, जिन प्रसरवणी सुनिया सलोक, लोन लोई डिठ प्यास ना बुझे मूह कणी, नानक से अखड़िया बयान, जिनी डिसंदो मा पिरी शंत, जिनी घर प्रव डिठ तिन कुर्बाने राम, से साती दर गए पाने राम, ठाकुर मन ने से प्रधान ने हर से तीरंग रते, हर से अघाए सह सुमाए, घट कर मैया जाते, से ही सज्जन संत से सुविए, ठाकुर अपने पाने, कहो नानक जिन हर पर डिटा, तिन कैसल कुर्बाने, सलोक दे अंधारी अंध, सुन्नी नाम विहूणिया, नानक सबल जिनम, जय कड़ उठा सच तनी शंत, तिन खनिये वन्या, जिन मेरा हर पर डिठा राम, जन चाह अघाने, हार घर अमृत मीठा राम, हर मने मीठा प्रभु तूठा, अम्य बूठा सुख पय, दुख नास परम विनाश तनते, जब जगदीश ईसै जय जय, मोह रहत विकार थाके, पंचते संग तूटा, कहो नानक तिन खनिये वन्या, जिन कट मेरा घर प्रभूटा, सलोक जो लोड़ींदे राम, सेवक से ही कंडया, नानक जाने सत, साई संतना भारा शंत, मिल जल जले खटा ना राम, संग ज्योति ज्योत मिला ना राम, समाए पूर्ण पुरख करते, आप आपे जानिए, तै सुन सहज समाध लागी, एक एक वखाणिए, आप गुप्ता आप मुक्ता, आप आप वखाना, नानक प्रम पै गुण बिना से, मिल जल जले खटाना, वढ़हंस महला पंजवा, प्रभ करण कारण सुमरथा राम, रख जगत सगल देखता राम, समरथ सरणा जोग स्वामी, कृपा ने सुखदाता, हौ कुर्बानी दस तेरे, जिनी एक पछाता, वर्ण चिन्ह ना जाए लखया, कथन ते अकथा, बिनवंत नांग सुनो बिनती, प्रभ करण कारण सुमरथा, ए जी तेरे तू करता राम, प्रभ दुख दर्द प्रम करता राम, प्रम दुख दर्द निवार खिन मैं, रख ले हो दीन दयाला, मात पिता स्वाम सज्जन, सब जगत बाल गोपाला, जो शरण आवे गुण दान पावे, सो

अंतर सहज समाधि तिर रहया पर पूरे वेख हदूरे रंग माने सहज सुपाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

तेत पै दे पग खिस पेर रंग राता सो सच्चा चोला तेत पै दे तिखा निवारे प्रा मेरा साहिब शब्द ऊंचा है क्यों मिला प्रीतम प्यारे मैं प्रव सच पछाणिया होर फूली अवगण यारे मैं सदा रावे पेरे अपना सचड़े शब्द विचारे।

तू करण कारण समर्थ है सह सृजनहारे जिस तू मिले प्यारिया सो तुद मिले गुरमुख विचारे हों बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा

अंतर सांत सदा सोह दर सच्चे सोभा पावे नानक गुरमुख हर नाम पाया सहजे सच समाहे पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गद पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ठ हर उपदेश सुनाई बिन गुरु हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत

पौड़ी जिनके हर नाम स्यासद हिरद हर नामो तिन कौ रखन हारा हर नाम पिता हर नामो माता हर नाम सखाई मित्र हमारा हर नावे नाल गल्ला हर नावे नाल मसलत हर नाम हमारी करदा नित सारा हर नाम हमारी संगत अद प्यारी हर नाम कोल।

ब्राह्मण घारा यो मनुआ सदा सुख वसे सहजे करे वापारा अंतर गुर ज्ञान हरतन है मुक्त करामन हारा नानक जिसनु नदर करे सो पाए तो होवे दर्श त्यारा पौड़ी तन तन सो गुरसिख कहिए जो सदगुर चरणी जाए पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन हर नामा मुख राम कहया तन तन सो गुरसिख कहिए जिस घर नाम सुने मन अंध पया तन तन सो गुरसिख कहिए जिन सदगुर सेवा कर घर नाम लया तिल गुरसिख कौ फाऊ सदा नमस्कारी जो गुर कै फाणे गुरसिख चलिया। श्लोक महला तीजा मन हड़के ने न पायो सब थके कर्म कमाए मन हड़के कर परम दे दुख पाया दूजे पाए रिद सिद्ध सा मोह नाम नवस्ते मन आए गुरसेवा ते मन निर्मल होवे अज्ञान अंधेरा जाए नाम रतन हर प्रगट होआ नानक सहज समाए। महला तीजा सबदे साधन आयो नाम न लगो प्यार रसना फिता बोलना नित नित हुए खुवार नानक किरद पय कमावना कोई न मेटन हार पौड़ी तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम को सांते आई तन तन सतपुरख सदगुरु हमारा जित मिले हम हर भगत पाई तन तन हर भगत सदगुरु हमारा जेकी सेवा ते हम हर नाम लिवलाई तन तन हर ज्ञानी सदगुरु हमारा जिन वैरी मित्र हम को साध समधिट दिखाई तन तन सदगुरु मित्र हमारा जिन हर नाम से हमारी प्रीत बनाई। श्लोक महला पहला कर ही मुंद वदेश तेर

की खबर न पाई, अखी मीड़ चलिया अंधेरा, हर दर्द से न पाई, जम दर बादा ठौर न पावे अपना किया कमाई, नदर करे ताए अखी वेखा कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई, निरपो निरंकार निर्वैर पूर्ण जोत समाई, नानक गुरमन परम न पागे सच नाम वड़ियाई, सोरठ महला पहला दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंड चौबारा, सगल पवन की मूर्त एका मुख तेरे टकसाला, मेरे साहेबा तेरे चूज वड़ाना जल थल।

प्रसन्न कोय न किसी जेह अंडज जेरज उत्पुज सेतज तेरे की तेजनता। एक पुरब मैं तेरा देखिया तू सबना महे रवंता तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया मैं मूर्ख किस दीजै परमत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै। सोरठ महला पहला हौ पापी पतत परम पाखंडी तू निर्मल निरंकारी अमृत चाख।

मन रे समझ कम मत लागा नाम सार अनस लूप हन हे पछताए अभागा रखाओ आपत को हरख जाद को रोवे ए दुसुख ना लेन लागा आपे दुसुख भोग पुगावे गुरमुख सु अनरागा हर ऊपर अवर क्या कहिए जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन इवरस खोया।

दुट चौकड़ी सदा कूड़ कमाव है, ना बूझे विचारे निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हरनाक्ष नखे बिदारे प्रहलाद जान सद हर गुण गावे, हर जीव लय उबारे आस को बो भला कर जान है, मन मुख मत नकाई साधु जन की निंदा व्यापे जसन जन्म गवाई, राम नाम कदे चेते नाही अंत गए पछताई, सफल जन्म भगतां का कीता गुर सेवा आप लाए, सब दे राते सह दे माते अन दिन हर गुण गाए, नानक दास कहे बेनंती हों लागा तिन कह पाए, सोरठ महला तीजा तो सिख सका बंद पहे पाई, जे गुर के पाने विच आवे अपने पाने जो चले पाई, विछड़ चूटा खावे बिन सतगुर थो कदे न पावे पाई, फिर पछोतावे हर के दास सुहेले पाई, जन्म जन्म के किल बिग दो काटे आपे मेल मिलाई रहाओ, क्यो कुटुंब सब जी के बंधन पाई, परम पुला संसारा बिन गुर बंधन टूटे नाही, गुरमुख मोह द्वारा कर्म करे गुर शब्द ना पछाण है, मर जन्म वारो वारा आओ मेरा जग पलच रहा भाई, कोई न किसी केरा गुरमुख मैल पायन गुण गावन निरकर होए बसेरा, ऐथे बूझे सो आप शाने हर प्रभय तिसकेरा, सदगुरु सदा दयाल है भाई, विण भागा क्या पाईए एक नदर कर वेखे।

लागे पाई, गुरमुख पाए हर थाए रखाओ। बिन गुर प्रीत ना उपजे पाई, मनमुख दूजे पाए। तो कुटे मनमुख कर्म करे पाई, पल्ले किशु न पाए। गुर मिले नाम मन रविया पाई, साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवे पाई। गुर कह गेत अपार, आया सो प्रवान है पाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई गे पाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, ती गुणी तिरपुण व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छूटी गे पाई। पूछो ज्ञानियां जाए, मारे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जू तेरे मन वसे पाई, सदा हर के गुण गाए रखाओ। नामे ते सब उपजे पाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे पाई, भवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है पाई, हृदय रखिया उरतार। गुर शरणाई उबरे पाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। तोरठ महला तीजा कर पहला, सदगुर सुख सागर जग अंतर, होर थे सुख नाही। हौम में जगत दुख रोग व्यापिया, मर जन्मे रोवे ताही। प्राणी सदगुर सेव सुख पाए।

संध्या तर्पण करे गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वडभागी, जिसनु आप मिलाए। हारस पीजन सदा त्रिवतासे, विचो आप गवाए। यो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाए। नानक सतगुर मिले ता अख

आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए आपे सूत आपे बहु मणिया कर सकती जगत परोए आपे ही सूद तार है प्यारा सूद खिंचे टह ठेरी होए मेरे मन मैं हर बिन अवर न कोए सगुर विच नाम निधान है प्यारा कर दया अमृत मुख चोए रहाओ आपे जल तल सबत है प्यारा प्रवे आपे करे सोए सबना रिजक समाहां दा प्यारा दूजा अवर न कोए आपे खेल खिलाएं दा प्यारा आपे करे सोए।

सब जगह मछलीख हरे आपे, आप फुल न फुली प्यारा, अवर न दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप जाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तवता पे, आपे सदगुर आप है चेला, उपदेश करे प्रभ आपे, आपे नाउज पाएंदा प्यारा, आपे ही जप जापे, आपे अमृत आप है प्यारा, आपे ही रस आपे, आपे आप सलांदा प्यारा, जन नानक हर स्थापे, सोरठ महला चौथा, आपे कंडा आप तराजी, प्रभ आपे तुल तुलाया, आपे सौ आपे बणजारा, आपे वणज कराया, आपे धरती साजियन प्यारे, पिछे टंक चढ़ाया, मेरे मन हर घर त्याए सुख पाया, हर घर नाम निदान।

सुखदाता गुर पूरे दिया उपदेशा तुम्हें संग पराता रखाओ काम क्रोध लोभ मोह अवमहाना ता मैं सुख नहीं पाईए हो रेन तू सगल की मेरे मान तो अनद मंगल सुख पाईए काल न पाने अंतर विद जान ताकि कर मन सेवा कर पूजा होम ओ मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा गोविंद दामोद।

कर कृपा अपनो कर लीना, मनवसिया अविनाशी ताको विघन न को लागे। जो सदगुर अपने राखे चरण कमल बसेर अंतर अमृत हारस जाखे। कर सेवा सेव प्रव्यापने जिन मन की इच्छ पुजाई, नानक दाता के बलिहार है जिन पूर्ण पैज रखाई। सोरठ महला पंजवा माया मोह मगन अंधियार है, देव नहार न जाने। जियो पिंड साजन रचिया बल अपनो कर माने, मन मूड़े देख रहे हो प्रस्वामी। जो करे सोई सोई जाने, रहे न कछुए शानी रखाओ। जे बा स्वाद लोभ मद मातो उपजे अनक बेकारा, बहु जून परम दुख पाया होमे बंधन के पारा। देख किवाड़ अनक पड़ दे मह, पर दारा संग फाक है। चित्र गुप्त जब लेखा मांग है, तब कौन पड़दा तेरा ठाक है। दीन दयाल पूर्ण दुख पंजन, तुम बिन ओट न काई। काढ़ लियो संसार सागर में, नानक प्रभु शरणाई। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म हुआ सखाई, कथा कीर्तन सुखदाई। गुरपूरे की बाणी जपन करो नित प्राणी, हर साचा सिमर हो पाई। साध संग सदा सो पाईए, हर बिसरना कब हो जाई। हरहाओ अमृत नाम परमेश्वर तेरा, जो सिमरे सो जीवे। जिसनु कर्म प्राप्त होवे तो जन निर्मल जीवे। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, गुर चरणी मन लागा। गुण गाव अजुत अविनाशी, आनंदन हा रंग जागा। मन इच्छे से ही फल पाए, हर की कड़ा सोहेली। आद अंत मद नानक हो तो प्रभु वा बेली। सोरठ महला पंजवा पंच पदा, बिन से मोह मेरा अर तेरा, बिन से अपने तारी। संतो या बतावो कारी, जित हो में गर्भ निवारी रखाओ। सर्व भूत पार ब्रह्म कर मानिया, होवा सगल रे नारी। देखो प्रभु अपने संगे, चूके पीत परमारी। औखद नाम निर्मल जल अमृत, पाइये गुरु द्वारी। कहो नानक जिस मस्तक लिखया, तिस गुर मिले रोग बिदारी।

गुर गोपाल प्रसोई, जा की शरण पया सुख पाई है, बहुत दुख ना होई रहाओ। वड भागी सा संग परापद, तिन पेट दुर्मद खोई, तिन की तूर नानक दास बांछे, जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारे, सूका मन साधारे, दर्शन पीड़ित होत निहला, हर का नाम विचार, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देव है, काटे जमकी फंदा रखाओ। समर्थ पुरख पूर्ण विधाते, आपे करने हारा, अपना दास हर आ

सदगुर प्रसाद मिल पंचो नी सहसा चुकाया सिगदारो ने पतियाया उमरावो आगे तेरा मिल राजन राम न बेरा अब ढूंढन कतो न जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ। आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लब्ध अपनी पाई ता कत आवे कद जाई ते साच न्याय नबेरा ऊहा समठा गुर समचेरा अंतर जामी जाने बिन बोलते आ पछाने सर्व थान को राजा ते अनहद शब्द अगाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई। सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम साय हो कर बैठे गुरु त्याय हो गुर पूरे सद कहया सो सुख साचा लहया अपना होयो गुर मेहरवाना आंद सुख कल्याण मंगल स्यों कर आए कर सिनाना रहाओ। साची गुर वडियाई ताकि कीमत कह न जाई सिर साहा पातशाहा उर पेड़ मन ओ माहा सगल पराज तलाथे मिल सा संत कै साथे गुण निदान हर नामा जप पूर्ण होए कामा गुर कीनो मुक्त द्वारा हलसट करे जयकारा नांग पा मेरे साथे जन्म मरण फैलाथे। तोरठ महला पंजवा गुर पूरे कृपा तारी प्रा पूरी लोच हमारी कर स्नान गृह आए अंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिये उठत बैठत हर हर त्याईये आन दिन सुकृत करिये रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पागी पाए कोड़ जन्म के किलबत नासे हर चरणी चित लाए उस करो सदा प्रवे अपने जिन पूरी कल राखी जी जन सब पय पवित्रा सतगुर की सच साखी बिघन मिनासन सब दुख नासन सतगुर नाम दृढ़ाया खोए पाव पय सा पावन जन नान सो कर आया। सोरठ महला पंजवा साहिब गुनी गहेरा कर लश्कर सब तेरा रखवाले गुर गोपाला सब जी पय दयाला जाप अंदर हो गुर चरणा पौ कते नहीं प्रसरणा रहाओ। तेरिया दासा हृदय मुरारी प्रभ अवचल नीब उसारी बाल तन तकिया तेरा तू पार उठा गुरु मेरा जिन जिन सा संग पाया तू प्रभ आप तराया कर कृपा नाम रह दिया फुजल खेम सवतिया होए प्रभु सगाई सब उठला गी पाई सास सास प्रत्याई है हर मंगल नानक गाई है। सोरठ महला पंजवा सोग सहज आनंदा प्रा मिलियो मन पाबंदा पूरे गुर कृपा तारी तांगल पई हमारी हर की प्रेम भगत मन लीना नित बाजे अनहत बिना रखाओ हर चरण की ओर सतानी

पंजवा पार ब्रह्म निभागी पूरी ताई बात न रही या उरी गुर चरण लाए निस्तारे हर घर नाम सुमारे अपने दास का सदा रखवाला कर कृपा अपने कर राखे मात पिता जो पाला रखाओ वड़भागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मिटाया हर भगत पाए चित लागा जब जी वे से वड़भागा हर अमृत बाणी गावे साधा की तूरी नहावे अपना नाम आपे दिया प्रवकरण हार रख लिया हार दर्शन प्राण आधारा क्यों पूर्ण विवन विचारा हर कृपा अंतर जामी दास नानक शरण स्वामी सोरठ महला पंजवा गुरपूरे चरणी लाया हर संग सहाई पाया जय जय गीता सुहेले हर कृपा पा मेले हर गुण गावो सदा सुभाई मन चिंदे सगले वल पावो जी कै संग सहाई ही रखाओ नारायण प्राण आधारा हम संत जनारे नारा पतत पुनीत कर लीने कर कृपा हर जस दीने पार ब्रह्म करे प्रतपाला सा जी संग रखवाला हर दिन रैन कीर्तन गाइये बौड़ न जोनी पाइये जे देवे पुरख बिधाता हर हस्ते नहीं जाता जम कंकर नेड़ न आया सुख नानक सरणी पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरे कीती पूरी प्रव रव रया पार पूरी खेम कुशल पया इसनाना पार ब्रह्म मिट्टो कुरबाना गुर के चरण कवल तारे बिघन ना लागे तिल का कोई कार्ज सगल सवारे हरहाओ मिल साधु दुर्मत खोए पादत पुनीत सब होए रामदास सरोवर नाते सबला थे पाप कमाते गुण गोविंद ने तगाई है सा संग मिल त्याई है मान बांशित फल पाए गुरपूरा हृदय ते आए गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम ते आया प्रभ अपना बिरद रखाया राग सोरठ महला पंजवा दय सदन मेघ कटा काट दामन चमक डरायो सेज अकेली नींद नौ नैन फिर परदेश सिधायो हुण नहीं संदेश रो मायो एक उसरो सिद्ध करत लाल तब चतर पात्रो आयो रखाओ तू बिसरे यो लाल प्यारो सर्व गुणा सुखदायो मंदिर चर के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हो पीत पयो है बीचो सुनत दिस निकटायो पांबीरी के पाद पर दो बिन पेखे दूर आयो पयो कृपाल सर्व को ठाकुर सगरो दुख मिटायो कहो नानक होमे पीत गुर खोई तौ दयार बीठलो पायो तब रहो अंधेसरो मायो जो चाहत सो गुरु मनायो सर्व

सुने प्रा तू है सब कुछ करने हारा तू आपे दाता आपे भूता क्या यो जंत विचारा क्या गुण तेरे आख वखाणी कीमत कहन न जाई पेख पे जीवे प्रव्यपना आचर्य तुम्हें वडाई तार अनुग्रह आप प्रा स्वामी पत मद किन्नी पूरी सदा सा नानक बलिहारी बाछो संता तूरी सोरठ महला पंजवा गुरपुरा नमस्कारे।

कौन कर्म विद्या को कैसी, धर्म कौन फुन करई, कौन नाम गुर जाके सिमर हर सागर को तरई, कल में एक नाम कृपा निध जाहे जपे गद पावे, और धर्म ताके सब नाहन हे विद वेद बतावे, सुख दुख रहत सा निर्लेपी या को कहत गुसाई, सो तुम ही मैं बसे निरंतर नानक दर्पण न्याई, सोरठ महला नाम माई मैं केवद लखो गुसाई, महामो अज्ञान तिमर मो मन रहो उरझाई रहाओ, सागल जन्म परम ही परम खोयो न अस्थिर मद पाई, विख्या सकत रहो निसबासर न छूटी अदमाई, सा संकब हू न कीना न कीर्त प्रगाई, जन नानक मैं नाय को गुण राख लिहो सरनाई, सोरठ महला नाम माई मन मेरू बस नागे, निसबासर विखेन को तावत हे बिदरो को तागे रघाव, वेद पुराण सिमरत के मासुन निमखन ही ये बसावे, पर थान पर दारा सुमरत्यो बिरथा जन्म सिरावे, मद माया के पयो बाबरो तू तने कस ज्ञाना, कड़गी पीतर बस्त नरंजन ताको मर मना जाना, जबगी सरन साध की आयो दुर्म सगल बिनासी।

सुआन पूजो पयो न सुध बहु जतन मैं कीनो नानक लाज बिरद की रखो नाम तुहारो लीनो सोरठ महला नामा मान रे गयो न गुर उपदेश हां पयो जो मूड मुंडायो भगवो कीनो भेस रखाओ ता छाड़ के झूठे लागो जन्म अकारथ खोयो कर पर पंज उधर नज पोखयो पस की न्याई सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया घात बिकाना उर्ज रहो बिखियन संग बौरा नाम रतन बसराना रहो चेतना चेत्यो गोविंद फिरता आओ सिरानी हो नान घर बिरध पछानो उल्ले सदा परानी सोरठ महला नावा जो नर दुख में दुख नहीं माने थोक सुने वर पह नहीं जाके संचन माटी मान है रगाव नैन दया ने उस्त जाके लोभ मोह अभमाना हर्ग सोचते रहे न्यारो नाय मान अपमाना असा मनसा सगल त्याग गए।

सहज पियाई। दुबदा विच बैराग न होवी, जब लग दूजी राई। सब जग तेरा तू एको दाता, अवर न दूजा पाई। मानमुख जंत तुकसदा निवासी, गुरमुख दे वडियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीव न पाई। तुन समात महापरमार्थ, तीन पवन पत नामंग। मस्तक लेख जिया जग जूनी, सिर सिर लेख सहामंग। कर्म सुकर्म कराए आपे आपे पवित्रामंग। मान मुख जूट लय पैमानंग, आपे ज्ञान आगामंग। जिन चाख्या सेई साध जानन, ज्यो गूंगे मिठे आई। अकथे का क्या कथिये पाई, चलो सुधार जाई। गुरदाता मेले तामत होवे, निगुरे मत ना काई। ज्यो चलाए त्यो चल पाई, होर क्या को करे चतराई। एक परम भुलाए एक भगती राते, तेरा खेल अपारा। जित तुद लाए ते गाफल पाया, सुंगम चला मनहारा। सेवा करी जे कशोवे अपना, जियो पिंड तुम्हारा। सतगुर मिले है कृपा कीनी, अमृत नाम अधारा। गगन अंतर वास्या गुण परगासया, हुण मैं ज्ञान त्यान। नाम न पावे कह कहावे, तत्तो तत्व खानं। सतगुर पीरा गैर गंभीरा, बिन सबदे जग बौरान। पूरा बैरागी सह सुभागी, सच नानक मन मानं।

दो तुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होए हम पराधी निर्गुणे पाई तुझी ते गुण सोए मेरे प्रीतमा तू करता कर वेख हो पापी पाखंडिया पाई मन तन नाम सेख रहाओ दिख माया चित मोया पाई चितराई पद खोए चित में ठाकुर सच बसे पाई ये गुर ज्ञान सुमोए रूड़ो रूड़ो अखिए पाई रूड़ो लाल चलूल जे मनहर सु बैरागिए पाई दार खर साच अपूल पाताली आकाश तू पाई कर कर तू गुण ज्ञान गुर विले सुख पाया पाई चूका मनो गुमान जल मल काया मंजिए पाई ही मैला तन होए ज्ञान महार सुनाई गे पाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजिए पाई क्या मांगो क्या देहे पाहन नीर पखालिए पाई जल मैं बूढ़े तेहे गुर बिन अलख न लखिए पाई जब बूढ़े पद खोए मेरे ठाकुर हाथ वडाइया पाई जय पावे तय दे बैयर बोले मीठली पाई साच कहे पिर पाए फिर गए बेदी सच वसी पाई अद करही हरनाए थको आखे अपना पाई गुरते बुझे सुजान जो बीदे से उबरे पाई शब्द सच्चा निशान ईदन अदक सके लिए पाई पाव करन चक पाए खेन पल नाम हृदय बसे पाई नानक मिलन सुपाय सोरठ महला तीजा कर पहला ते तुकी।

का हर हर दयाल होवे जिस उपर सो गुरमुख हर जब जिन का। श्लोक महला तीजा जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला हुआ स्याहो खनली तोती उजली ना होवई जे सो तोमन पाहो गुर प्रसादी जीवित मरे उल्टी होवे मत बदलाहो नानक मैल ना लगई ना फिर जोनी पाहो महला तीजा। चौ जुगी कल काली कंडी ए उत्तम पदवी ए जुगमाहे गुरमुख हर कीर्त फल पाईए जिन को हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी आंदन भगत हर उचर है हर भगती माए समाहे पौड़ी हर हर मेल सा जन संगत मुख बोली हर हर पली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमती हर सदा मान हर जप जप औखद खादिया तब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना साध ग्रासना विसर से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान। श्लोक महला तीजा रे जन उथारे दब्यो तुत्या गई विखाए सगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ श्री जलो गुणवारा जो गुर कारना कमाए जगत जलंदा डिठ मैं होमे दूजे पाए नानक गुर शरणाई उबरे सच मन शब्द त्याए। महला तीजा सबदरते होमे गई तो बावंती नार तिरके पाने सदा चले ता बनिया सी गार सेज सुहावी सदा पिर रावे हर वर पाया नार ना हर मरे ना कदे दुख लागे सदा सुहागण नार नानक हर प्रामेल लई गुर के हित प्यार। पौड़ी जिन्ना गुर गोप्या अपना ते नर बुरियारी हर जियो तिनका दर्शन ना करो पापिष्ट हत्यारी ओए कर कर फिर एक शुद्ध मन ज्यो धरकट नारी वडभागी संगत मिले गुरमुख सवारी हर मिल लो सतगुर दया कर गुर को बलिहारी। श्लोक महला तीजा गुरसेवा ते सुख उपजे फिर दुख न लगे आए जमन मरना मिट गया काले का किश ना बसाए हर से ती मन रब रहा सच्चे रहा समाए नानक हो बलिहारी तिन कहो जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा तिन सबदे शुद्ध न हो गई जे अनेक करे सीगार फिर की सार न जाने दूजे पाए प्यार साक शुद्ध साक लखनी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर घर अपनी दया कर हर बोली बैणी हर नाम ते आई हर उचरा हर लाहा लैणी जो जपदे हर घर दिन सरात तिन्हों कुरबैणी जिन्ना सतगुरु मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैणी हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। श्लोक महला चौथा हर दर्शन स्यो प्रीत है हर दर्शन को मित हर दर्शन के वस है जो जंती कह वस जंत हर के दास हर त्याय दे कर प्रीतम स्यो ने हो कृपा करके सुनो प्रभ सब जग में वरसे में हो जो हर दर्शन की उस्तद है सा हर की वडियाई हर अपनी वडियाई पाम दी जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याय दा हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचे तिस बिन रहन न जाई सगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई। पौड़ी रहन दिन

की अब बेगल कहन न जाई। हमारा परम गया पहु भागा जब राम नाम चित लागा रहाओ। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमासे आई। बाजीगर स्वांग सकेला आपने रंग रवे अकेला। कतनी कह परम न जाई सब कथ कथ रही लुकाई। जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हिरदे रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी। कहे कबीर रंगराता मिलियो जग जीवन दाता जाके निव

ऐसो बेडी बर ना साको सब अंतर सब ठाई हो गूंगे महा अमृत रस जाखेया पूछे कैन ना जाई हो बेडी के गुण सुन री बाई।

चारो राजा राम को रास जे रस अनस बिसर जाही रहाओ। जान अजान पै हम बावर सोच असोच दिवस जाही। इंद्री सबल निबर विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं। सहित आन अचरित अनकश समझना परे अपर माया।

तुम स्यों तोर तमन स्यों जो रह रहाओ। जौ तुम दीवरा तौ हम बाती, जौ तुम तीर्थ तौ हम जाती। साची प्रीत हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जय जय जाओ तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। तुमरे भजन कटे जम फंस, भगत हेत गावे रवदास। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा। हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बिचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। रहाओ राखो कंध उसारो नीवा, साढ़े तीन हाथ तेरी सीमा। बंके बाल पाग सिर डेरी, यो तन हुए को पसम की ठेरी। ऊंचे मंदर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। मेरी जात कमीनी पांत कमीनी, ऊंचा जन्म हमारा। तुम शरणागत राजा रामचंद, कहे रविदास चुमारा। चमरटा गांठ न जनई,

सास मास तब जियो तुम्हारा, तुम्हें करा प्यारा। नानक साहिब एक कहत है सच्चे परवदगारा, जे तू किसे ना देही मेरे साहेबा, क्या को कड्डे गहना। नानक बिन वै सोख छिपाइये, पुरब लिखे का लहना। नाम खसम का चित न किया, कपटी कपट कमाना। जाम द्वार जा पढ़ चलाया,

प्रसाद क्यों सिमरी सिवरिया नहीं जाए तपे आओ जीड़ा बिल लाए फिर जसवारे साचा सोए तिस विसरे चंगा क्यों होए हिकमत हुकम न पाया जाए क्यों कर साच मिलो मेरी माए रखाओ वखर नाम देखन कोई जाए ना को चाखे ना को खाए लोग बतीने ना पत होए ता पत रहे आराखे जा सोए जै देखा तै रहा समाए तुद बिन दूजी ना ही जाए जे को करे कीते क्या होए जिसनु बगसे साचा सोए हुण उठ चलना मोत के ताल क्या मोह देसा गुण नहीं नाल जैसी नदर करे तैसा होए बिन नदरी नानक नहीं कोय तनासरी मोहल्ला तीजा नदर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवे रहे लिवलाए आत्मा प्रात्मा एको करे अंतर की दुबदा अंतर मरे गुर प्रसादी पाया जाए हर सो चित लागे तिर काल ना खाए रहाओ सच सिमरे होवे परगास ताते बिखिया महे उदास गुर की ऐसी वड्याई पुत्र कलतर विचे गद पाई ऐसी सेक सेवा करे जिसका जीव तुझ आगे तरे साहिब पावे सो परवान सो सेवक दरगे पावे मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहिब के

सांत सह सुखबाणी सेवा साची नाम समाणी शब्द मिले प्रीतम सदा त्याय साज नाम वडियाई पाए आपे करता जुग जुग सोए।

साच रते अहे निस बैराग क्यों जुग में अमृत साची बाणी पूरे पाग हर नाम सुमाणी सिद्ध साधक तरसे सब लोए पूरे पाग प्राप्त होए सबके साचा साचा है सोए उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए सच साचा सच आप दृढ़ाए नानक आपे वेखे आपे सच लाए तनासरी महला तीजा नावे की कीमत मित कही न जाए से जन तन जिन एक नाम लिवलाए गुरमत साची साचा विचार आपे बगसे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूर्ख मूर्ख मन माहे होमे विच सवकार कुमाहे गुर प्रसादी होमे जाए आपे बगसे लए मिलाए बिखिया का धन बहुत अभमान अहंकार डूबे ना पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत साला ही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर न कोए जिस सच लाए सुई लागे नानक नाम सदा सुख आगे राग तनासरी महला तीजा कार चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीखक पेखारी तेरे तू निज पत है दाता हो दयाल नाम दियो मंगत जन कौ।

अखंड हो अनकबीरी समझाव हो। हम अज्ञान अल्प मत थोरी तुम अपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुमगी सजन सुहेले। रखो रखन हार दयाला नानक करके गोले। तनासरी महला पंजवां पूजा वर्त तिलक इस नाना।

हाँ हाँ प्रभ राख ले हो, हम ते किशु न होए मेरे स्वामी, पर कृपा अपना नाम दे हो, रहाओ अगर कुटुंब सागर संसार

जन साधु पूरे गुर समझाया, आन सगल विद काम न आवे, हर हर नाम ते आया, ताते मोय धारी ओड़ गोपाल, शरण परयो पूर्ण परमेश्वर, बिनसे सगल जंजाल रहाव, सुर्ग मृत पयाल भूमंडल सगल ब्यापे माए, जी उदाहरण सब कुल तारन, हर हर नाम ते आए, नानक नाम निरंजन गाइए, पाइए सर्ब निधाए।

तोहर मंगना देखो पसार नयन सुनो साधु के बैन प्राण पद चित राख सगल है मरना रहाओ चंदन चो अरस पोग करत अनेक बिखिया विकार दिख सगल है फीके एक है गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन तान तन अपन थाप्यो हार जप न निमुख जाप्यो अर्थ द्रव देख कछ संग ना ही चलना या कोरे कर्म पला तिन ओढ़ गई संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम धान मिट्यो है अवमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे कल कलेस लो मोह मा पौजल तारे हे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे साल संग जपन संग मन निधान तारे चरण कमल नमस्कार कुन गोबिंद बिचारे साजना की रेन नानक मंगल सुख सुधारे तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद सिमरो सिमर सिमर सुख पाव सास सास माले हे लोग परलोक संग सगाई जद कदम होए रखवाले गुर का बचन बसे जी नाले जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे पाए ना साके जाले हरहाओ निर्तन कौ तन अंधले कौ टेक मार दूध जैसे बाले सागर मैं भोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनाश्री महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय संचाई नाम निध रिद सिद्ध हर लागर ही जन पाई संतन को आनंद सगल ही जाई गृह बहार ठाकुर भगतन का हराबर या सर्वठाई रखाओ ताको कोई ना पहुंचे नकारा जाके अंग कुसवाई जमकी त्रास मिटे जिस सिमरत नानक नाम त्याई तनाश्री महला पंजवा दर्भवंत दर्भ देख गर्भ पूर्णवंत अभमानी राजा जाने सगल राज हमारा त्यो हरजन टेक स्वामी जे को अपने ओट समारे जैसा बित तैसा होए वर्त अपना बल नहीं हारे हरहाओ आन त्याग पै इक आसर शरण शरण कर आए संत अनुग्रह पै बन निर्मल नानक हर गुण गाए तनासरी महला पंजवा जाको हारंग लागो इस जुग में तो कई तगै सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सदगुर पूरा ठाकुर गाई गए आत्म रंग।

राम रहाव सेमर सेमर स्वामी प्रव्यपना निटन आवे जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पाए उहर का ताम चरण कमल हर जन की थाती कोड़ सुख विश्राम गोविंद दमोदर सिमरो दिन रैन नानक सत कुरबान तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते एक दान सगल मनोरथ पूर्ण होवे सिमरो तुमरा नाम रहाओ चरण तुम्हारे हृदय वस संतन का संग पावो सो अगर मैं मानना व्यापे आड़ पैर गुण गाओ स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मध्यान्त प्रभ जापन नानक रंग लगा परमेश्वर बहुड़ जमना छापन तनासरी महला पनवा मांगो राम ते सब थोक मानक को जाचत श्रम पाई है प्रभ के सिमरन मोख रहाओ ओखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारे कोख कृपा सिंध सेव

अगन प्रव्याप बुझाई नानक उदरे प्रव शरणाई तन्हा श्री महला पंजवा तृप्त भई सज भोजन खाया मन तरसना नाम थे आया जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी बस्तर उड़ाए अनदन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ आस असवारी हर का

साधो यो जग परम भोलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता पाई सुध बनता।

दुख भंजन तासु मना लगाना। जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नावा तेजोगी को जुगतना जानो। लोभ मोह माया ममता फोन जे कड़माए पछानो। हराव पर निंदा उस्त तन जाके कंचन लो समानो। हरग सोगते रहे अतीता जोगी ताए बखानो। चंचल मान दहत को तावत अचल जाए ठहरानो। ओ नानक ए बिद को जो नर मुक्त ताए तुम मानो। तनासरी महला नामा आप मैं कौन उपाव करो। जेवद मन को संसार चूके।

परम ध्यानी साच साचे भाव आनंद अनदन हरख साचा दुख किल विख पर हरे सच नाम पाया गुर दिखाया मैल नाही सच मने संगत मीत मिलाप पूरा नामणु गावे गावन हार शब्द सुहावणु सारा ही साचे मन सदगुर पुन दान दया मते फिर संग पावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराध एकंकार साचा नित दे चढ़े सवाया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मिलाया कहन कहे सब कोय ए बड़े आखिए ओ मूर्ख नीच अजान समझा साखिए सच गुर की साखी अमृत भाखी तित मन मान्या मेरा पूज करे आवे विख लादे शब्द सचे गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भार पुर रहे आसोई नानक साच कहे बेनंती मन मान जाए सच सोई।

माया मोह जलाए प्रीतम रसमय रंग करेई प्रभु सचे सेती रंग रंगेती लाल पई मन मारी नानक साच वसी सोहागण किरस्यों प्रीत प्यारी फिर कर सोहे नार।

जंगम जाती तायो धूप दीप नहीं बेद तायो पूजो पाती ताया वो खंड खोजते नविंद पाई ना कछ आए वो ना कछ।

हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छत नीका, अनाज मंगो सत सीका, कौ पैस मंगो लावेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, करकी गीहन चंगी, चन तन्ना ले वै मंगी, चैत

नाथा, हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चाले मार्ग पंथा। हम अंधले को गुर अंचल दीजे, जन नानक चले मिलनता। जैत सरी महल्ला चौथा, हीरा लाल अमोल कहे पारी, बिन गाक मीका काखा। रतन गा गुर साधु देखे हो, ताब रतन बिका नोन लाखा। मेरे मान गुप्त हीर हर राखा, दीन दयाल मिलायो गुर साधु, गुर मिले हीर पराखा। अरहाओ मानमुख कोठी अज्ञान अंधेर, तेन का रतन लाखा। ते उजड़ परमु एगा वारी, माया पोयंग बिख चाखा। हर घर साग मिलो जननी के, हर साधु शरण हमारा कहा। हर अंगीकार करो प्रस्वामी, हम परे पाग तुम पाखा। जेवा क्या गुण आख वखाण है, तौं वड़ अगवड़ पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जैत सरी महला चौथा, हम बार कछु न जाने गातमित। तेरे मूर्ख मुग्ध एयाना, हर कृपा धार दीजे मत ऊतम। कर लीजे मुग्ध सयाना, मेरा मन आलसिया उगुलाना। हर घर आन मिलायो गुर साधु, मिल साधु कपट

आपे सदगुर समुंद मताहा, आपे मत मत तत कढ़ाए, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जपो हर लाहा, हर घर पगदड़ी मन पाई, हर घर नाम ओ महाराम, आपे वरदाना वरसाह, गुरमुख पूंजी नाम सहा, हर घर दाद करो प्रभावे, गुण नानक नाम ओ महाराम, जैत श्री महला चौथा, मेल सत्संगत संग गोराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर घर कृपा तार मधुसूदन, मेल सत्संग ओ महाराम, हर गुण बाणी सरम सुनाहा, हर कृपा सदगुरु मिलाहा, गुण गावे गुण बोले बाणी, हर गुण जपो महाराम, तब तीर्थ वक्त जग पुन तोलाहा, हर घर नाम ना पुजे पुजाहा, हर घर अतुल तोल अदपारी, गुरमत जपो महाराम, तब कर्म तर्म घर नाम जपाहा, किल विख मैल पाव तो वाहा, दीन दयाल हो जन ऊपर, जो नानक नाम ओ महाराम, जैत श्री महला पंजवा, घर तीजा एक ओंकार, सदगुर प्रसाद, कोई जाने कवन इहा जगमीत, जिस होए कृपाल सोई बिद बूझे, ताकि निर्मल रीत रखाओ, माल पिता बनता सुध बंधव, इष्ट मीत अर पाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंत है को ना सहाई, मुक्त माल तनक लाल हीरा, मन रंजन की माया, हा हा करत बेगानी अवधे, ता मैं संतोख न पाया, हस्त रथ असव पवन तेज, तनी भूमन चतुरंगा, कंगना चलो इन मैं कछुए, ऊर सिधायो नांगा, हर के संत प्रे प्रीतम प्रभ के, ताके हर हर गाइये, नानकी हा सुख आगे मुख उजल, संग संतन के पाइये, जैत श्री महला पंजवा, घर तीजा दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, दियो संदेसरो कहियो प्रे कहियो, विष्णु भई मैं बुबद सुनते, कहो सुहागन सही यो रघाओ, को कह तो सब बहार बहार, को कह तो सा महियो, वरना दिसे चिन्ह लखिए, सुहागन सात बुझियो, सर्व निवासी कड़कड़वासी, लेप नहीं अल्पहियो, नानक कहे तो सुनो रे लोगा, संत रसन को बसइयो, जैत श्री

मनसा पूरव जब प्रभ कहो गुर प्रसाद नानक मन वसिया दुख न कबहू चूरव बुझ प्रभ कहो जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा सजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कर कर तसे बसेरा अरहाओ दुख आराधन दुख आराधन बिसरे ना काहू बेरा नाम जगत कोर सूर उजारा बिरसे परम अंधेरा थान थनंतर सब नहीं जाई जो दिसे सो तेरा संत संग पावे जो नानक जिस बौर न होई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कार चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद आव मैं सुख पायो गुर आग तजी स्यान बचिंत सारी अंग छोड़ो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोय मोहियो तो सरन परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जब छोड़ी मोहरी लाग तेरे ओ सागर पावक को जो संत फेटे वड़ भाग जन नानक सर्व सो पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान धरा त्रिड़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभु जीव माया करा रहाओ काल जल अरमा जंजाला छुड़के जमे डरा आयो दुख हरण शरण करना पत कयो चरण आसरा नाव रूप पयो सत्संग पंध पार परा आप्यो पियो गातियो परमा को नानक अजर जरा जैत सरी महला पंजवा जाको पहे गोविंद सहाई दुख सहज आनंद सगल स्यों वाको व्याध न काई रहाओ दिसे सब संग रह अलेपा न व्यापे उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई दया मया कृपा ठाकुर की से ही संत सुपाई तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई जैत सरी

तलोक राज कपटं रूप कपटं धन कपटं कुल गर्भत है संचंत दिखिया शलंग शिद्रंग नानक बिन घर संग न चालते पेखंदड़ो की पुल तुम्मा दिस्तम सुना अड़ना लहंदड़ो मुल नानक साथ न जुलई माया।

इन्नी आप रघाओ जिसके से फिर तिन ही समाले तिन से सोग संताप। आदे राखे जने अपने हर होए माई बाप जी जंत होए मेहरवाना दया तारी हरनाथ। नानक सरन परे दुख पंजन जा काबड़ प्रताप टोडी महला पंजवा स्वामी सरन परे उदर बारे कोड़ अपराध खंडन के दाते खुद बिन कौन उधारे। रहाओ खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाई गे माया रच बंद हारे। चरण कम संग प्रीत मन लागी सुरजन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे। टोडी महला पंजवा हर तीजा चौपदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। हां हां लपटे उरे मूड़े पशु न थोरी तेरो नहीं सो जानी मोरी। रहाओ आपन राम न चीनो खिनुआ जो प्राई सो अपनी मनुआ नाम संगी सो मन ना बसायो छोड़ जाए वाहु चित लायो सो संचो जिद भूख तसायो। अमृत नाम तुसा नहीं पायो काम क्रोध मोह कूप परया गुर प्रसाद नानक को तरया। टोडी महला पंजवा हमारे एक हरी हरी आन अवर संजान ना करी रखाओ। वड़े पा गुर अपना पायो गुरमुख हर नाम दृढ़ायो हर घर जाव ताप्रत नेमा हर घर चाहे कुशल सब खेमा आचार व्यवहार जात घर गुनिया महा आनंद कीर्तन घर सुनिया। कहो नानक जिन ठाकुर पाया सब के गृह में आया। टोडी महला पंजवा हर चौथा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। रूड़ो महा रंगो लोड़ काली हर नीहो ना होए। रहाओ हाउ टूडेंदी दर्शन कारण बीती बीती पेखा गुर मिल परम गवाया हे एवद पाई मैं साधु कन्हो लेख लिखियो तुर माथे एवद नानक हर नैन अलोए। टोडी महला पंजवा गर्भ गैलड़ो मूड़ो ही ओ रे हीओ महराज री मायो तीघर न्याई मुए फाक्यो रे। रहाओ कणो कणो कणो सा लोड़े बिन लैने कैठे पायो रे महराज रो गाथ वाउ सुन लुबड़ो ने भागड़ो पाए संजोयो रे। सुन मन सीख खल जन सगलो थारे सगले प्राश्त मिट्यो रे जाको लैणो महराज री गाठड़ियो जरनान गर्भास ना पौड़े हो रे। टोडी महला पंजवा तार पंजवा दो पदे एक ओंकार सदगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभु जी कीन पंच दुख और अंग रोग ए तंत सगल दूर कीन। रहाओ बंधन तोर शोर बिखियाते गुर को सब मेरे ही रे दीन। रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो प्रेम गयो मुझे हर रंग पीन। देखो लालन पाड़ बीज खोए अंध चिता हरखे।

कर्म तर्म जपे ही राम नाम निर्मल है रीत रहा प्राण आधार जीवन तन मोर देखन को दर्शन प्रभ नीत पाठ काट तो सत्संग मोर मन अपने को मैं हर सगा कीत संत प्रसाद पाए मन निर्मल कर कृपा अपने कर लीत सिमर सिमर नानक सुख पाया आद जुगाद भगतन के मीत टोडी महला पंजवां प्रभ जी मिल मेरे प्राण बिसर नहीं निमखी रहते अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ खो वो परम राख मेरे प्रीतम अंतर जामी सुड़ सुजान कोट राज नाम तन मेरे अमृत तारो प्रमान आड़ परसना गुण गावे जद पूर अगावे समरथ कान तेरी शरण जीन के दाते

तब हर हर हर जल त्यायो, जन नानक कौ हर भेटे स्वामी, दुख होमे रोग गवायो। बैराड़ी महला चौथा, हर जन राम नाम गुण गावे, जे कोई निंद करे हर जन की अपना।

जप मन राम नाम निस्तारा, कोट कुटंतर के पाप सब खोवे। हर पवजिल पार उतारा रघाओ, काया नगर बस्त हर स्वामी। हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निगट बस्त कजनदर न आवे। हर लादा गुर विचारा, हर आपे सहो सराफ रतन हीरा। हर आप किया पासारा, नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे। तो सहो सचा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मन हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याई सुखदाता। जाका अंत न पारा वारा, रहाओ अगन कुंट में उर्द लिव लागा। हर राखे उदर मंजारा, सो ऐसा अगर सेव हो मेरे मान। हर अंत शिडामन हारा, जाके हृदय बसया मेरा हर हर। इस जन को करो नमस्कारा, हर कृपा ते पाएगे हर जप। नानक नाम अधारा, बैराड़ी महला चौथा। जप मान हर हर नाम नित ध्याए, जो इच्छे सोई फल पावे। फिर दुख

बाद तब आए हो मुख समाह हुक्म सा वर्तनी सच साहेब सच अखेल सब हरतनी साल आए हो सच सब ऊपर हरतनी जिस नाही कोई शरीक किस लेखे हो गनी हरहाओ पौन पानी धरती आकाश कर मंदिर घर बनी विच वरत नान के आप झूठ कहो क्या गनी तिलंग महला चौथा नित निफल कर्म कमाए बफावे दुर्मतिया जब आने वाल वंच।

चित न आवे, जित आए कंटक काल ग्रसै, तिस नानक लय छुड़ाए, जिस कृपा कर हिरदे वसै। तिलंग महला पंजवां कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खाक नूर करदंग आलम दुनियाए, आसमान जिमी दरख्त आब

ऐसा जित सदा सुख होई रहाओ। जिन रंग कंत न रावया सा पचो रे ताणी, हाथ पछोड़े सिर तुण जब रैन विहानी। पचो तावा ना मिले जब चूकेगी सारी, ता फिर प्यारा रावीए जब आवेगी वारी। कंक लिया सोहागणी मैं ते वधवी एह, से गुण मुझे न आवनी कहे जी दोस्त रेह। जिनी सखी सो रावया तिन पूछोगी जाए, पाए लगो बेनती करो लेओगी पंथ बताए। हुगम पछाणे नानका पौ चंदन लावे, गुण कामण कामण करे तो प्यारे को पावे। जो दिल मिलया सो मिल रहया, मिलया कई रे सोई। जे वो तेरा लोचिए बाती मेल न होई, तात मिले फुन तात को लिव लिवे को तावे। पुर प्रसादी जानिए तो आन पहु पावे, पाना वाड़ी हुए कर

निर्दिन में प्राणी छिन छिन औद बिहात है फूटे कड़जो पानी हराव हर गुण गए ना गाव ही मूर्ख अज्ञाना झूठे लालच लाग कह न मरन पछाना आजू काज बिगड़ो नहीं जो प्रभु गुण गावे कहो नानक ते भजन ते निर्भय पद पावे तिलंग मोहल्ला नामा जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफल सोया जो दिन उपजिया संग ही सो पी संग न होया रखाओ माग पिता सुद बंद जा हित जा सो कीना जियो छूट्यो जब देत डार अग्न मैं दीना जीव तलो व्योहार है जको तुम जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुफन समानो तिलंग महला नामा हार जस रे मना गाए ले जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कयो मान ले मेरो अरहाओ संपत रतन राश्यो आत्मो लगायो काल फास जब गल परी सब पयो परायो जान बूझ के बावरे ते काज बिगारयो पाप करत सुगत्यो नहीं न गर्भ निवारयो जे बिद गुर उपदेसया

तीर्थ मल मल नहाए, तेरा सदड़ा सुनीजे पाई, जे को भय अलाए अरहाओ, जैसा भी जे सोलने, जो खट्टे सो खाए, अगे पुछ न हो गई, जे सण निशाने जाए, तैसो जैसा काढ़िए, जैसी कार कमाए, जो दम चित न आवई, सो दम बिरथा जाए, यो तन वेची बै करी, जे को लए विकाए, नानक कम न आवई, जिद तन नाही सच्चा नाओ। सूही महला पहला, कार सतवां, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, जोग ना खिंता, जोग ना डंड, जोग ना पसम चढ़ाई है, जोग ना मुंदी मूड मुड़ाए है, जोग ना सिंगी वाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत एव पाई है, गल्ली जोग ना होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, योगी कही है सोई रहाओ, जोग ना बाहर मड़ी मसानी, जोग ना ताड़ी लाई है, जोग ना देद संतर पवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, सतगुर भेटे ता सहसा टूटे, तावत वर्ज रहाई है, निज चरे सह तुन लाग, करगी परचा पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुग तिव पाई है, नानक जीव त्यामर रही है, ऐसा जोग कमाई है, वाजे बाजो सिंगी वाजे, तौ निरभौ पद पाई है, अंजन महे नरंजन रही है, जोग जुगत तौ पाई।

संत हर निमाणिया मान देवाए। जो धरती चरण तले ते ऊपर आवे त्यो नानक साध जना जगत आन सा पैरी पाए। सूही महला चौथा तू करता सब कुछ आपे जाने। क्या तुझ पे आख सुनाइए बुरा पला तो सबके सूझे। जेहा को करे तेहा को पाइए। मेरे साहेब तू अंतर की वेद जान है। बुरा पला तो सबके सूझे। तुझ पावे तेवे बुलावे रहाव। सा मोह माया शरीर हर किया विज देही मानुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देव है एक मनमुखो तंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते तो सबना से लिखिया लेख। जे ही तू नदर करे तेया को होवे बे नदरी नाही को पेख। तेरी वडियाई तू है जाने ता तुझ नित तिहाए। जिसनू तुझ भावे तिसनू तू मिल है। जन नानक सो थाए पाए। सूही महला चौथा जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर। इनके सब रोग गवाए ते मुक्त पए जिन हर।

नहीं पाइये, अंत न लइये, मंत्र से चरणारे पावो दान, ईठ होए मांगो मुख लागे संतरे नारे। जन नानक कौ गुर कृपा तारी, प्रभा देन हिस्तारे। सूही महला पंजवा, कार तीजा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मांगन बहुता,

तुम छड़ाए लियो जन अपना, उर्ज परयो जाल जग सुपना रहाओ, पर्वत दोख महाबिकराला, खिन मैं दूर किए दयाला, सोग रोग बिपत अद पारी, दूर पई जपना मुरारी, दृढ़ तार लीनो लड़लाए, हर चरण गए नानक सरणाए, सूही महला पंजवा, दीन छड़ाए दुनी जो लाए।

जाए, सर्व निरंतर एको जाग, जित जित लाया तित तित को लाग, अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोल आया तेरा। सूही महला पंजवां, प्राते काल घर नाम उचारी, ईत यूत की ओर सवारी, सदा सदा

गुण गावत अचुत अविनाशी, ताते काटी जम की फासी, हर कृपा लीने लड़ लाए, सदा आनंद नानक गुण गाए। सूही महला पंजवा, अमृत बजन साध की बाणी, जो जो जप तिसकी गत होवे, हर हर नाम नित रसन बखानी, अरहाओ कली काल के मिटे कलेसा, एको नाम मन महे परवेसा, साधु तूर मुख मस्तक लाई, नानक उदरे हर गुर शरणाई।

कामना तौल हार जित हर बसराए रहाओ अंध गरीबी साध संग जित प्रवचित आए जल जाओ इहो बड़पना माया लपटाए पीसना पीस ओढ़ कामरी सुख मन संतोखाए ऐसो राज ना किते काज जित नहे त्रिवताए नगन फिरत रंग एक कै ओ शोभा पाए पाठ पटंबर बिरथया जे रच लोभाए सब किश तुमरे हाथ प्रभ आप करे कराए सास सास सिमरतरा नानक दान पाए सूही महला पंजवां।

पैर जित तुद ते आई निर्मल होवे देह मेरे राम हां सो थान पालन आया खोजत खोजत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ वेद पढ़े पाड़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरे बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार अरारे हुए वरते मां देव अवधूता तिन पी अंत न पायो तेरा लाए थके विभूता सहज सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सबल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन।

लायन हरसो लयन मिलाय सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीराते सच्चा सुख सच्ची वडियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी ढोवा।

आओ छह सीगर कामन करे आवे ता सुहागण जा कंते पावे ना तिस रूप ना रेख्या काई अंत न साहेब सिमरिया जाई तुरत मत नाही चतुराई कर कृपा प्रभ लाभ हो पाई खरी सियाणी कंत न पाणी माया लागी परम फुलाणी हो में जाई ता कंत समाई तो कामन प्यारे नव निध पाई अनक जन्म बेशरत दुख पाया कर गए लेहो प्रीतम प्रवराया पंत नानक सौ है पी होसी जय पावे प्यारा तय रावेसी सूही महला पहला कर नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का

सजदे चाखी तृष्णा अग्न बुझाए गुर के शब्द राता सजदे माता सजदे रहा सुनाए हर का नाम सत कर जाने गुर के पाए प्यारे सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे एको सच्चा सब में वर्त विरला को विचारे आपे मेल लहे ता बगसे सच्ची भगत सवारे सबो सच सच सच वर्त गुरमुख को ई जाने जमण मरण हुकुम वर्त गुरमुख आ पछाणे नाम त्याए ता सतगुर पाए जो इच्छे सो फल पाए नानक तिसदा सब किश होवे जे विचों आप गवाए सूही महला तीजा काया कामण अत सवालेओ फिर वसे जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुर का शब्द समाले हर की भगत सदा रंग राता होमे विचों जाले वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी साज समाणी अरहाव काया अंदर सब कुछ वसे खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दा तावस सब ना करे प्रतपाला ताया कामण सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला काया अंदर या पे वस अलख न लखया जाई मानमुख मुगद बूझे नाही बार पालन जाई सदगुर सेवे सदा सुख पाए सदगुर अलख दिता लखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पटन बाजार इस काया अंदर नाम नौन दपाइये गुर के शब्द विचारा काया अंदर तोल तुलावे आपे तोल लनहारा यो मरतन जवाहर मानक इसका मोल अफारा मोल किधगी नाम पाइये नाही नाम पाइये गुर विचारा गुरमुख होवे तो काया खोजे होर सा परम खोलाई जिसनु दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतराई काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसाद दीपाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब ओपत जित संसार सच्चे अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सदगुर आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा काया जो सदगुर सेवे सच्चे आप सवारी विणनावे दर टोई नाही ता जम करे खुवारी नानक सच वडियाई पाए।

मनना पिजई आत्मैले चित कठोर सप्पे दुध पी आईए अंदर विस निकोर आप करे किसे आखिए आपे बख्शनहार गुरसबदी मैल उतर ता सच बनया सी गार सच्चा सहो सच्चे वणजारे उथे कूड़े ना टिकन ओ ना सच ना पावई दुख ही महे पचन होमे मैला जल फिरे मरजम में वारो वार पये किरत कमावना कोई ना मेटन हार संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार सच सराही सच मान दर सच्चे सच्चे यार गुर पूरे पूरी मत है।

साजन आए बुठे कर माही, हर गुण गावे त्रिप्त गाही, हर गुण गाए सदा त्रिप्तासी। फिर भूख न लग गए आए, दहे दिस पूज होवे हर जन की, जो हर हर नाम ते आए। नानक हर आपे जोड़ विछोड़े, हर बिन को दूजा नाही। साजन आए बुठे कर माही, एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद। राग सूही महला तीजा, कार तीजा, भगत जना की हर जीव रख है। जुग जुग रखदा आया राम, सो भगत जो गुरमुख होवे। हमे शब्द जलाया राम, हमे शब्द जलाया मेरे घर पाया। जेदी सची बाणी सची भगत करे दिन राती, गुरमुख आख बखाणी। भगतां की चाल सची अत निर्मल, नाम सच्चा मन पाया। नानक भगत सोह है दर सच, जिनी सचो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है, भगत हर के नाम सुमाने राम। हर भगत करे विचों आप गवाव है, जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे हर नाम खाणे, पए भगत मीठी लागी। अन दिन भगत करे दिन राती, करगी मह बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल, हर जीव वेखै सदा नाले। नानक से भगत हर कै दर साचे, अन दिन नाम सुमाले। मनमुख भगत करे बिन सतगुर, वेण सतगुर भगत न होई राम। होमे माया रोग व्यापे, मर जन्मे दुख होई राम। मर जन्मे दुख होई दूजे पाए परज वगोई। विन गुर तत् न जानिया, भगत विहूणा सब जग परमिया। अंत गया पछतानिया, कोड़ मध्य किने पछाणिया। हर नामा सच सोई, नानक नाम मिले वड्याई। दूजे पाए पद खोई, भगतां कै घर कारज साचा। हर गुण सदा वखाणे राम, भगत खजाना आपे दिया। काल कंटक मार समाणे राम, काल कंटक मार समाणे। हर मन पाणे नाम दान सत पाया, सदा अखुट कदे ना निखुट। हर दिया सहज सुपाया, हर जन ऊचे सदगी ऊचे। गुर के शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए। जुग जुग शोभा पाया, सूही महला तीजा। शब्द सच्चे सच सोहला, जिथे सच्चे का होए विचारो राम। हौमे साब केल भग काटे, साज रख्या उर तारे राम। सच रख्या उर तारे दुत्तर तारे, फिर पवजल तरण ना होई। सच्चा सदगुर सच्ची बाणी, जिन सच वखा लिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे, सच वेखे साब सोई। नानक साचा साहेब साची नाई, सच निस्तारा होई। साचे सदगुर साच बुझाया, पत राखे सच सोई राम। सच्चा भोजन पाओ सच्चा है, सच्चे नाम सुख होई राम। साचे नाम सुख होई मरे ना कोई, गर्भ न जूनी वस। ज्योति ज्योत मिलाई सच समाई, सच नाए परगस। जिनी सच जाता से सच्चे होए, अन दिन सच त्याइन। नानक सच नाम जिन हिरदे वसया, ना विछड़ दुख पाइन। सच्ची बाणी सच्चे गुण गावे, तेत कर सोयला होई राम। निर्मल गुण साचे मन तन साचा, विच साचा पुरख प्रसोई राम। सब सच वरत सचो बोले, जोस करे सो होई।
ਜੈ ਦੇਖਾ ਤੈ ਸੱਚ ਪਸਰਿਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ। ਸੱਚੇ ਉਪਜੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ, ਮਰ ਜਨਮੇ ਦੂਜਾ ਹੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਕਰਾਵੇ ਸੋਈ।

मन मजी वधाई। जब साजन सुने कर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सखाई, नानक कृपा करके मिले, विछड़ कदे ना जाई।

राम हदूरे, हरे आत्म राम पसारिया स्वामी, सर्व रहया परपूरे, अंतर बाहर हर प्रवेक को, मिल हर जन मंगल गाए, जन नानक दूजी लाभ चलाई, अनहद शब्द बजाए, हर तीजड़ी लाभ, मन चाओ पया, बैरागिया बलराम जियो, संत जना हर मेल, हर पाया वडभागिया बलराम जियो, निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी, संत जना वडभागी पाया, हर कथिए अकथ कहानी, हिरदे हर हर, हर तुन उबजी, हर जपिए मस्तक पाग जियो, जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जियो, हर चौथड़ी लाभ, मन सहज पया, हर पाया बलराम जियो, गुरमुख मिलया सुभाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो, हर मीठा लाया, मेरे प्रपाया, अनदिन हर लिवलाई, मन चिंदिया फल पाया स्वामी, हर नाम वजी वाधाई, हर प्रभु ठाकुर काज रचाया, तन हिरदय नाम विगासी, जन नानक बोले चौथी लावे, हर पाया प्राप अविनाशी, एक ओंकार सदगुर प्रसाद, राग सूही शांत महला चौथा, कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए, हृदय रसन रसाए, हर रसन साए मेरे प्रपाए, मिलया सहज सुपाए, अन दिन भोग भोगे सुख सोवे, शब्द रहे लिवलाए, वडे भाग गुरपूरा पाईए, अन दिन नाम त्याए, सहजे सहज मिलया जग जीवन, नानक सुन सुमाए, संगत संत

नदर प्रभु सत्संग हार मंगल रस रसन रसाय नारक नाम परगासा अंतरतन विचारे गुरमुख नाम प्यारे हर नाम प्यारे शब्द निस्तारे अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया कर चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प सिगार बनाए हर प्रसवते पाया जो प्रभु कहे सोई पर कीजे नानक अंक समाया हर प्रभु काज रित्याया गुरमुख वियाहने आया वियाहने आया गुरमुख अर पाया साथन कंत प्यारी संत जना मिल मंगल गाए हर जीव आप सवारी सुर नर गण गंधर्व मिल आए अपूर्व जंज बनाई नानक प्रपाया मैं सचा ना कदे मरे ना जाई राग सूखी शंत महला चौथा कार तीजा एक ओ अंकार सदगुर प्रसाद आवो संत जनो गुण गावे गोविंद के रे राम गुरमुख मिल रही है कर वाजे शब्द कन्हेरे राम शब्द कन्हेरे कर प्रतेरे तू करता सब ताई आयन जपी सदा सालाही साज शब्द लेवलाई अन दिन सहज रहे रंग राता राम नावृद पूजा नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा सब में रव रहया हो प्रभ अंतर जमी राम गुर शब्द रवे रव रहया हो प्रभ मेरा स्वामी राम प्रभ मेरा स्वामी अंतर जमी कट कट रव्या सोई गुरमत सच पाईए सह समाईए तिस बिन अवर ना कोई सहजे गुण गावा जे प्रभावा आपे लय मिलाए नानक सो

सो सदा सद जीवई बलराम जियो, तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सिरजनहारा, जिते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रैन आस तुम्हारी, सबल दर्श पेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। समलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जीओ, सदगुर मिलिया दयाल गुण अवनासी गाया बलराम जीओ। गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गए कंठ लाए मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजे वजे अनहदा चुनकारे, सुन पए बिनासे सगल नानक प्रापुरख करणे हारे। उपजा तत ज्ञान सहुरे पेईए, एक हर बलराम जियो ब्रह्मे ब्रह्म मिलिया। कोई न सके पिन कर बलराम जियो, बिस्म पेख बिस्म सुनिए बिस्मादन नहीं आया। जल थल महियल पूर्ण स्वामी, काट कड़ रहा सुमाया, जिसते उपजा सुमाए सुमाया, कीमत कहण ना जाए, जिसके चलत ना जागी लखणे, नानक तिसे ते आए। राग सूगी शंत महला पंजवा, कर दूजा एक ओ अंकार, सदगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे। हर रंग अनदिन जागे, हर रंग जागे पाप भागे, मिले संत प्यारिया और चरण लागे परम भागे। काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी, हर नाम जावड भागे। बिनवंत नानक शरण स्वामी, जियो पिंड प्रभ आगे। अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा, गुण गाए हर घर दुख नासे, रहस उपजय मन कणा। मन तन निर्मल देख दर्शन, नाम प्रभ का मुखपणा। होए रेण साधु प्रभ अराधु अपने प्रभावा, बिनवंत नानक दया धारो सदा हर गुण गावा। गुरमिल सागर तरिया हर चरण जगत निस्तरिया, हर चरण त्याए सफल पाए मिटे आमन जाना। पाए भगत सुभाए हर जप अपने प्रभावा, जप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई। बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई, पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा। गुर संत पाया प्रभ तिहाया, सगल इच्छा पुनिया, हौ ताप बिनसे सदा सरसे, प्रा मिले चिरी मछुनिया। मन सांत आई वजी वधाई, मनो कदे ना विसरे, बिनवंत नानक सदगुर दरड़ाया सदा भाज।

की शरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा सदा सदा प्रभु को बलिहार नानक सतगुरु बाणा ऐसा गुरवड भागी पाई है जित मिले प्रभ जापे राम जन्म जन्म के किलबिख उत्तर है हर संत धूड़ी नित नापे राम हर धूड़ी नाइए प्रभु ते आई है

दय दिस पूर रहे आजा स्वामी कीमत कहन न जाई कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन अचल नीव रखाई ज्ञान त्यान पूर्ण परमेश्वर हर हर कथा ने सुनिए राम अणगल चोज भगत पा पंजन अणगल वाजे तुनिए राम अणगल चुनकारे तत् विचारे संत गोष्ट नित होवे हर नाम अराध है मायल सब कट है किल बग सगले खोवे तै जन्म न मरना आमन जाना बौर न पाइये जोनिए नानक गुर परमेश्वर पाया जिस प्रसाद इश पुनिए सूही महला पंजवा संता के कार्ज आप खलोया हर कम करावन आया राम तरत सुहावी ताल सुहावा विच अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जग अंतर लाते सगल वसूरे पूर्ण पुरख अच्युत अविनाशी जस वेद पुराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नव निध सिद्ध रिद दीने करते टोट न आवे काई राम खात खर्चित बिलशित सुख पाया करते की दात सुवाई राम दात सुवाई निखुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिघन सगले उठ नाठे दुख न नेड़े आया सांत सहज आनंद कनेरे बिरसी पूख सबाई नानक गुण गावे स्वामी के

सच रते से निर्मले होमे तज विकार जिस तू मिले सो तुद मिले सो ईस त्यारा। श्लोक महला तीजा सूविगे सूहा सब संसार है जिन दुर्मत दूजा पाओ खिन में झूठ सा बिरस जाए ज्यो टेके ना बिरख की छाओ। गुरमुख लालो लाल है जो रंग मजीठ सचड़ाओ उल्टी सगत सिवे कर आई मन वसया हर अमृत नाओ। नानक बलिहारी गुर अपने जित मिले हर गुण गाओ। महला तीजा सूहा रंग विकार है संतन पाया जाए इस लेंदे बिलम न हो वई रंड बैठी दूजे पाए मुंद एयानी दुमनी सूहे वेस लुभाए। शब्द सच्चे रंग लाल कर पाए पाए सीगार बनाए नानक सदा सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई सीधा अंत न जापई गुर शब्द बुझाई माया मोह गुबार है दूजे परमाई। मनमुख ठौर ना पाए नी फिर आवे जाई जोत भावे सोथी है सब चले रजाई। श्लोक महला तीजा सूहे वेश कामण कुलखणी जो प्रभ छोड़ पर पुरख तरे प्यार ओस सील ना संजम सदा झूठ बोले मनमुख कर्मखवार। जिस पूर्व होवे लिखया तेस सतगुर मिले पतार सूहा वेश उतार तरे गल पैरे खिमा सीगार पीगे सौरे बहु शोभा पाए तिस पूज करे साब सहसार। और राई किसे दीना रले जिस रावे सिरजनहार नानक गुरमुख सदा सुहागणी जिस अविनाशी पुरख प्रतार। महला पहला सूहा रंग सुपने निसी बिन तागे गलहार सच्चा रंग मजीठ का गुरमुख ब्रह्म विचार। नानक प्रेम महारसी सब पुरियाईया शार पौड़ी यो जग आप्यो पायोन कर चोज विडान पंच तात विच पाइयन मो चूड़ गुमान आवे जाए पवाइये मनमुख अज्ञान। एक ना आप बुझायोन गुरमुखर ज्ञान भगत खजाना बख्सियोन हर नाम निधान। श्लोक महला तीजा सू विगे सूहा वेस छड तू ता तिर लगी प्यार सूहे वेस तिर केने ना पायो मनमुख दज मुई गावार। सतगुर मिले सूहा वेस गया होमे विचो मार मन तन रत्ता लाल हुआ रसना रती गुणसार। सदा सुहागण शब्द मान पाए पाए करे सीगार नानक कर्मी मैल पाया फिर राख्या उरतार। महला तीजा मुंदे सूहा पर हरो लाल करो सीगार आवन जाना विसर गुरसबदी विचार मुंद सुहावी सोनी जिकर सहज पतार। नानक सात नरावीए रावे रावण हार पौड़ी मोह कूड़ कुटंब है मनमुख मुग्ध रत्ता होमे मेरा कर मोए केश साथ न लिता सिर उपर जम काल न सुजई दूजे परमिता। फिर वेला हथ न आवई जम काल बस किता जेहा तुर लिख पायोन से कर्म कमिता। श्लोक महला तीजा सतिया ए न आखियन जो मड़िया लग जलन नानक सतिया जानियन जे बिरखे चोट मरन। महला तीजा पी सो सतिया जानियन चीर संतोख रहन सेवन साई अपना नित उठ।

पौड़ी सच्चा अमर चलायून कर सत फुरमान सदा निचल रव रहा सो पुरख सुजान गुर प्रसादी सेविए सच शब्द निशान पूरा थाट बनाया रंग गुरमत मान आगम अगोचर अलख है गुरमुख हर जान श्लोक महला पहला नानक बदरा मालका भीतर तरिया आन खोटे खरे परखियन साहिब कै दीवान महला पहला नावन चले तीरथी मन खोटे तन चोर एक भाव लथी नात्या दोए पा चढ़िए सहोर बार तोती तूमड़ी अंदर विस निकोर साध पले अणनात्या

माया ग्रस्त परमत है प्राणी, रख ले वो जने अपना, ज्यों प्रहलाद हरनास ग्रस्यो हर रख्यो हर सरना, कामन कमन की गात मित कहिए हर की गे पतत पवन्ना, ओ टोवे टोर हाथ चमचमरे हार उतरे ओ परे ओ सरना।

बात होवे नहीं। अपना पला सब कोई बच सो करे जे मेरे चितना चितैनी मन की मत त्यागो हरजन एहा पात कठैनी आन दिन हर हर नाम त्यावो गुर सतगुर की मत लैनी मत सुमत तेरे वस स्वामी हम जंत तू पुरख जनतैनी जन नानक के प्रभ करते स्वामी जो पावे ते वे बोलैनी।

13 बोलो पैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगत तारनो हर भरपुर रहया जल थले राम नाम नित गाइये घर दुख बसारनो रगाओ हर किया है सबल जन्म हमारा हर जपया घर दुख बसारन हारा गुर पेटया है मुक्त दाता हर की हमारी सबल जाता मिल संगती गुण गावन मन राम नाम कर आसा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा हुई निरासी सो जन मिलया घर पासी ओई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पगलावनो राग बिलावल महला पंजवा चौप दे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे ते स्यो मोह क्यों मिलिए प्रप अवनासी तोहे कर कृपा मुई मार्ग पावो साध संगत के अंचल लाभो क्यों तरिये बिखिया संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पामन चुल्हारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हरख सोगत रह निरारा सिर ऊपर आद गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा।

मोहि अनाथ तुमरी शरणाई, कर कृपा कर चरण तिहाई। दया करो बसो मन आए, मोहि निर्गुण लीजे लड़लाए रघाओ। प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़, हर सेवक नाही जा पीड़। सर्व दुख हर सिमरत नसे, जा कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मंतन आधार, विस्तृत नाम होवत तनसार। प्रभ चित आए पूर्ण सब काज,

सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक, अवर सियाणपा बिरतियां प्यारे, रखन को तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, तो जन होत निखाला, गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनु होए दयाला। सबल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला पर पूरे, नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए तिना की, जिने अपना प्रभ जाता, हर नाम आराध नाम वखाणे, हर नामे ही मन राता, सेवक जन की सेवा मांगे, पूरे कर्म कमावा, नानक की बेनंती स्वामी, तेरे जन देखण पावा। वड़पागी से काढ़िए प्यारे, संत संत जिना वासो, अमृत नाम आराधिए निर्मल, मने होवे परगासो। जन्म मरण दुख काटिए प्यारे, चूके जमकी काणे, तिना प्राप्त दर्शन नानक, जो प्रभ अपने पाणे। ऊच अपार बेअंत स्वामी, कौन जाने गुण तेरे, गावते उधर है।

आप ही पुजारी आप ही देवा, आपे जोग आप ही जूता, नाग के प्रभ सद ही मुक्ता। बिलावल मोहल्ला पंजवा, आप उपावन आप सधरना, आप करामन दोष न लेना, आपन बचन आप ही करना, आपन विभो आप ही चरना। अरगाओ आप ही मस्त, आप ही बोलना, आप ही अशलना जाई शलना, आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही काट काट आप अलिपना, आप पे अवगत आप संगरचना। पहो नानक प्रभु के सब जचना। बिलावल मोहल्ला पंजवा, पूले मार्ग जिने बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे हृदय गुर चरण प्यारे। रघाव काम क्रोध लोभ मोहे मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना। दुसो करत जन्म फुनमुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, आगन सागर बूढ़त संसारा। नानक बां पकर सदगुर निस्तारा। बिलावल मोहल्ला पंजवा, तान मन तान अर्पो सब अपना, कमन सुमत जित हर हर जपना। कर आसा आयो प्रामंगन, तू पेखत सोभा मेरे आंगन। रखाओ आनक जुत कर बहुत बिचारो, साध संग इस मने उधारो। मत बुसुरत नहीं चतराई, ता मिल गए जान लय मिलाई। नयन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सबल सो आया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, मात पिता सुत साथ ना माया, साध संग सब दुख मिटाया। रब रहया प्रसम में आपे, हार जप रसना दुख ना व्यापे। रखाओ तिखा भूख बो तप्त व्यापिया, शीतल पए हर हर जस जापिया। कोट जदन संतोख न पाया, मान तृप्ताना हर गुण गाया। देहो भगत प्रभ अंतर जामी, नानक की बेनंती स्वामी। बिलावल मोहल्ला पंजवा, गुर पूरा बड़ भागी पाइये, मिल साधु हर नाम त्याइये। पार ब्रह्म प्रो तेरी सरना, केल भी काटे पर गुर के चरना। रखाओ आवर कर्म सब लोकाचार, मिल साधु संग हुए उधार। सिमरत सास्त वेद विचारे, जपिये नाम जित पार उतारे। जन नानक कहो प्रभु कृपा करिए, साधु तूर मिले निस्तरिये। बिलावल मोहल्ला पंजवा, गौर का शब्द दे मैं चीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना। संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना नाम दीना। रखाओ अंध

जो जो निंद करे इन ग्रहण की इस आगे ही मारे करतार। नानक दास ता की शरणाई जा को शब्द अखंड अपार।

आओ नित राम के ए अवखत जोग, आए बसो कर देश में ए पले संजोग, नानक प्रसो प्रसन्न पए लै गए वियोग। बिलावल मोहल्ला पंजवां, काहू संग न चालही माया जंजाल, ऊठ सुधारे शतरपत संतन कै ख्याल रखाओ। अहं बुद्ध को बिनसना ए तुरकी ताल, बोजूनी जन्मे मरे बिख्या विकराल। सत बचन साधु कह निद जपे गोपाल, सेमर सिमर नानक तरे हर कै रंग लाल। बिलावल मोहल्ला पंजवां, सहज समाध आनंद सुख

रखाओ। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृढ़ मानसा बिनसी है क्या लगे ग्वार। कहां सो पाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल सै सब अपनी वार। जिन पूरा सतगुर सेवया छे अस्थिर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राख पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा लोकन कियां वडियाईयां, बैसंतर पागो जो मिले प्यारा अपना ते बोल करागो। जो प्रभ जीव दाल होए तो भगती लागो, लपट रहो मन बसना गुर मिल ए त्याग हो रखाओ। करो बेनती अत कनी यो जीव हो मागो, अर्थ आनसा वारिया प्रे निमख सुहागो। पंच संग गुर ते छुटे दोह अर रागो, हृदय प्रकाश प्रगट पया निसबासर जागो। सारण सुहागण आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया मन तन सीत लागो।

संतन पगराल उगत सियानप कछ नहीं नाही कछ काल प्राम पै राखो मोहते तट हो जमजाल बिनो करो करना पते पिता प्रतपाल गुण गावो तेरे साध संग नानक सुखसाल बिलावल महला पंजवा कीता लोड़े सो करे तुझ बिन कछ नाहे परताप तुम्हारा देख कै जम दूत छड जाहे तुमरी कृपा ते छूटिए बिन से अहमेव सर्व कला समर्थ प्रभ पूरे गुरदेव रघाव खोजत खोजत खोजया नामे बिन कूर जीवन सुख सब साध संग प्रामनसा पूर जित जित लाभो तित तित लगे स्यानप सब जाली जत कत तुम परपूर हो मेरे दीन दयाली सबके तुम ते मंगना वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए बिलावल महला पंजवा साध संगत कहे बास बै कलमल सब नसना प्रभ से ती रंग रातिया ताते गर्भना ग्रसना नाम कैद गोविंद का सूची पई रसना मन तन निर्मल होई है गुर का जब जपना रखाओ हर चागत त्रापया मान रस लय हसना बुद्ध प्रगास प्रगट पई उल्ट कमल बेगसना शीतल सांत संतोख होए था बूझी तृष्णा दैध तावत मिट गए निर्मल थान बसना राखन हारी राख्या पय प्रसना नाम निधान नान सुखी पेख साध दर्शना बिलावल महला पंजवा पानी पखा पीस दास कह तब होहे निहाल राज मिलक सिकदारिया अग्नि मै जाल संत जना का शोरा ते चरणी लाग माया तारी छद्रपात तिन छोडो त्याग रखाओ संतन का दाना रूखा तो सर्बनधान गृह सागत क्षति प्रकार ते बिहु समान भगत जना का लूगरा ओड नगन न होई सागत सिर पाओ रेशमी पैरत पद खोई सागत स्यो मुख जोरे अद विचो टूटे हर जन की सेवा जो करे एक पूते छूटे साग किश तुम ही ते हुआ आप बंत बनाई दर्शन पीड़त साधका नानक गुण गाई बिलावल महला पंजवा श्रमनी सुनो हर हर हरे ठाकुर जस गावो संत चरण कर शीश धर हर नाम ते आवो

अवसर दुलभाया, अंतर्यामी आप प्रभु सब करे कराया, पद पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया, मद फूलो मानुख जान माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रभ है राया, बिलावल मोहल्ला पंजवा माटी तेजन साजया, कर दुर्लभ देखे आनक शिदर मन में टके, निर्मल दृष्टि हे क्यों बिसरे प्रा मने ते, जिसके गुण एहे प्राप तज रचे जे आन स्यो, थो रलिगे खे हे रघाव, सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे हे, छोड़ प्रपंच प्रसुमरचो तज कूड़े नेहे, जिन अनक एक बहु रंग किए है हो सी एहे, कर सेवा तस पार ब्रह्म गुरते मत लेहे, ऊचे ते ऊचा वड्डा सब संग बरनेहे, दास दास को दासरा नानक कर लेहे, बिलावल मोहल्ला पंजवा एक टेक गोविंद की त्यागी अन आस, सब ऊपर समरथ प्रभ पूर्ण गुणतास, जनका नाम आधार है प्रसरणी पाहे, परमेश्वर का आसरा संतन मन माहे रखाओ, आप रखे आप देवसी आपे प्रतपारे, दीन दयाल कृपा निधे सास सास संहारे, करणहार जो कर आ साई वड्याई, गुर पूरे उपदेसे आ सुख खसम रजाई, चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुकुम पछाता, न बिरसे न छोड़ जाए,

अंध कुब मैं गलत थे ताडे दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन पेटत होवत सुगी जी दान देन रखाओ परा पूर्वला लिखया मिलया अब आए बस्त संग हर साध कै पूर्ण आसाए पै बिन से त्यो लोग के पाए सुख थान दया करी समरथ गुर बसिया मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करण कारण समरथ प्रभ हर अगम अपार बलावल मुहला पनवा सोई मलीन दीनहीन जिस प्रभ सराना करने हार ना बूझई आप गने बेगाना दुख तदे जद विसरे सो प्रचित आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रखाओ ऊचे ते नीचा करे नीच खिन में थापे कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापे पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुबने का सुबना पया संग चलिया कमाया करण कारण समरथ प्रभ तेरी शरण आई हर दिन सरायण नानक जपे साध सद बल जाई बलावल मुहला पंजवा जल टोवो ए शीस कर पग पखलाओ बार जाओ लख बेरिया दस पेख जीवावो करो मनोरथ मने माहे अपने प्रभते पावो दियो सूनी साध के बीजन ठो लावो रखाओ अमृत गुण संत बोलते सुन मने पी लावो वारस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझाओ जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावो करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावो ऊठत बैठत जपो नाम क्यों कर्म कमावो नानक की प्रा बेनती हर शरण समाओ बिलावल मुहला पंजवा इहो सागर सोई तरह जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसे वडभागी पाए सुन सुन जीवे दास तुम बाणी जने आखी प्रगट पई सब लो मैं सेवक की राखी रखाओ आगन सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई अमृत नाम जल संचिया गुर पए सखाई जन्म मरण दुख काटिया तो का थान पाया काटी सिलक प्रम हो की अपने प्रभ पाया मत कोई जानो अवर कश सब प्रभ के हाथ सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ बिलावल मुहला पंजवा बंधन काटे आप प्रभु हुआ कृपाल दीन दयाल प्रपार ब्रह्म

रोग रगाओ औगद हर का नाम है जित रोग ना व्याप साध संग मन तन हित फिर दुख ना जाप हर हर हर हर जापिए अंतर लिवलाई केल उतरे शुद्ध होए साधु सरनाई सोनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बिलाई महामंत्र नानक कथ हर के गुण गाई बलावल महला पंजवां पए ते उपजे भगत प्राभ अंतर हुए शांत नाम जपत गोविंद का बिरसे परम प्रांत गुरपूरा जिस फेटिया ताके सुख परवेश मन की मत त्यागीए टुणिए उपदेश रगाओ सिमरत सिमरत सिमरिए तो पुरख दातार मन ते कहू ना विसर तो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरुदेव जा को कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव निदन दान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कहू।

आम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार। शरण परे प्रतेरिया प्रभु की वड्याई, नानक अंत न पाइये बेअंत गुसाई। बिलावल मोहल्ला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु, कार्ज पैरास करतारपुर करता वसै, संतन के पास रखाओ बिघन न को लागता। गुर पै अरदास रखवाला गोविंद राय, भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल। पूर्ण पंडार चरण कवन मन तन बसे, प्रपगम अपार बस्त कमावत सब सुखी। इस ऊन ना दिस संत प्रसाद पेटे प्रभु, पूर्ण जगदीश है। जय जयकार सबे करे सजथान सोह, जप नानक नाम निदान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल मोहल्ला पंजवा हर हर हर आराधिये, होई गई आरोग रामचंद की लिस्ट का, जिन मारिया रोग रखाओ। गुरपूरा हर जापिए नित कीचे भोग, साध संगत कै वारणे मिलिया संयोग। जे सिमरत सुख पाईए।

को नास, चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहो जब लग कड़ सास रखाओ। मात पिता बंदब तू है तू सर्ब निवास। नानक प्रभ शरणागति जा को निर्मल जास। बिलावल मोहल्ला पंजवा सर्ब सिद्ध हर गाई।

प्रमिट गया रविया नित राम। साध जना के संग बस्त सुख सहज विश्राम। साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रखाओ। पलट पए संसार में फिरते पए नाम। नांग ते शरणागति काट काट सब जान। बिलावल मोहल्ला पंजवां रोग मिटाया आव प्रभ। उपजया सुख शांत वड प्रताप अजज रूप। हर कीनी दात गुर गोविंद कृपा करी। रख्या मेरा भाई हम।

रोग मिटाए जीवालयन जा कावड़ प्रताप दोख हमारे बसेयन अपनी कल तारी मन बांझ तो फल दितेयन नानक बलिहारी राग बिलावल महला पंजवां चौपदे दो पदे कर छेवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे मोहन सरवनी ए ना सुनाए साकत गीत नाद तुंगाव बोलत बोल अजाए रहाओ सेवत सेव सेव साध सेव सदा करो किरताए अपय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए रसना अघ अघ गुण राती।

खोए खोए खोई हो मोको सतगुर मंत्र दरड़ाए। अतुल अतुल अतुल न तुलिए भगत वशल कृपाए।

मुकर पावे एकत सुनत सदा संघरे रखाओ काज भ्याजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग करे होमन कौरा अनहोमन मीठा दिखिया मैं लपटाए जरे अंध कूप मैं परे हो प्राणी परम गुबार मुह बंद परे कहो नानक प्रभुत दयारा गुर पीटे काढे वहां भरे बिलावल महला पंजवा मन तरसना हर चीना पय आनंदा मिटे अंदेसे।

करण गहे आमन जान परम पौ नाठा जन्म जन्म के किल विख दहे निरपो होए पजो जगदीश इहो पदार्थ वड़ भाग लहे कर कृपा पूर्ण प्रदाते निर्मल जस नानक दास कहे बिलावल महला पंजवा सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कही ना पहुंचे सुलही होए मुआ ना पाक रखाओ काड कुठार खसम सिर काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचया जिन रचिया तिन दीना ताक उत्तर मीत तन किशु न रहो तो छोड़ गया सा पाई साक कहो नानक तिस प्रभ लिहारी जिन जनका कीनो पूर्ण वाक बलावल मोहला पनवा पूरे गुर की पूरी सेव

बनायो आप अपने सेवक की आपे रख प्रभ मेरे को वड प्रताप पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर वस कीने जिन सगले जंत चरण कमल नानक शरणाई आराम नाम जप निर्मल मंत।

क्या गुण तेरे सार संहारी, सास सास प्रातु में चितारी, कृपा निध प्रवदीन दयाला, जी जंत की करो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापे, नानक प्रीत लाई प्रव्यापे, बिलावल मोहल्ला पंजवां, तन तन जोबन चलत गया, आराम नाम का भजन न कीनो, करत विकार निसपोर भया रहाओ, अंग प्रकार भोजन नित खाते।

दूत दुट सब होए खया। गुण अवगुण प्रकश ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया। अतुल बड़ाई अचुत अबनासी, नानक उचरे हर की जया। बिलावल मोहल्ला पंजवा, बिन पय भगती तरन कैसे। करो अनुग्रोपत उदाहरण, राग स्वामी आप परोसे रघाव। सिमर नहीं आवत फिरत मदमावत, दिखया राता स्वान जैसे। औद विहावत अधक मुहावत, पाप कुमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे। केशव कलेश नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

आपे मेल लए, जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। तज अवमान अरचिंत बैरानी साधे शरण पए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तांते रोग खय। महामुख अजान अज्ञानी रखे थार दए, तो नानक

रूप त्याभो नानक द्वारे आयो तौ मैं लालन पायो री। मोहन रूप दिखावे आमोय नींद सुहावे ता मेरी तिखा बुझानी आव मैं सहज समानी मीठी तरह कहानी। मोहन लालन पायो री अरहाओ दूजा बिलावल महला पंजवा मोरी अंग जाए दर्शन पावत हे राचो नाथ की सहाई संतना आव चरण गहे रखाओ आहे मन अवरना पावे चरणावे चरणावे। उलझ्यो आलम करंद कमल ज्यो आनस नहीं चाहे एके हर लाहे अन ते टूटीए रिख ते छूटीए मान हर सकूटीए संग साधु उल्टीए।

फल जाए, रस खाए साध गुआए, कूड़े लालच लपटे लपटाए, टूटे गुरमुख साज कमाए, दुआ दस मुंदरा मन अवधूता, ऐन से जाके कवे न सूता, जागत जाग रहे लिवलाए, गुर परचित काल न खाए, अतीत पै मारे बैराई, परणत नानक तय लिवलाई, दुआसी दया दान कर जाने, बार जा तो पीतर आने, बरती बरत रहे ने काम, अजपा जाप जपे मुख नाम, तीन पौन में एको जाने, साव सु संजम साज बिछाणे, तेरस तरवर समुंद किनारे, अमृत मूल शिखर लिवतारे, डाडर मरे ना बूढ़े कोए, निडर बूढ़ मरे पद कोए, डर में कर कर में डर जाने, तख्त निवास सच मन पाने, चौदस चौथे थावे लय पावे, रायस तामस सदकाल समावे, ससियर कह कर सूर समावे, योग जूत की कीमत पावे, चौदस पवन पाताल समाए, खंड ब्रह्मांड रह लिवलाए, अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बूझो ज्ञानी शब्द विचार, ससियर गगन जोत त्यो लोई, कर कर वेखे करता सोई, गुरते दिसे तो तिसगी माहे, मनमुख पूले आवे जाहे, तार दर थाप फिर तान सुहावे, आप छाणे जा सतगुर पावे, जय आसा ते बिनस बनासा, फूटे खपर दुबदा मनसा।

गोविंद के सब इश पुजामी राम नानक उधरे जप हरे सहू का स्वामी राम रति नेड़े अपने राम संगे ते लोइन नीके राम प्रापेहित इच्छा पुनिया मिल साजन जी के राम अमृत रस हर पाया दिखिया रस पीके राम नानक जल जले समाया।

त्याग उपदेश गुरु सुन मनिया तुर मस्तक पूरा भाग तब दिन सरायण गुण उचरे हर हर हर उर लिवलाग तब तन मन हरिया हुया मन खिड़िया हरिया बाग अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर चानन ज्ञान चिराग जन नानक जीवे देख हर एक निमक कड़ी मुख लाग महला तीजा बलावल तब ही कीजिए जब मुख होवे नाम अराग ना सब सुने जा लागे सहज त्यान अराग ना छोड़ हर सेविये ता दरगे पाएगे मान नानक गुरमुख ब्रह्म विचारिये तू के मन अवभान पौड़ी तू हर प्रभ आप अगम है सब तुद उपाया तू

काटू कट जागी, ऐसी बुद्ध समाचरी हट माए ते आगी। आपे आप ते जानिया तेज तेज समाना, कहो कबीर अब जानिया गोविंद मन माना। बिलावल चरण कमल जाके हृदय बसे, सो जन क्यों डोले देव मानो सब सुख नौन दिता के। सहज सहज बोले देव रखाव तावे माजो सब मैं पेख, कुटल गांड जब खुले देव बारंग बार माया ते अटके। लै नरजा मन तोले देव जय ओ जाए तई सुख पावे, माया तासना चूले देव। कहे कबीर मेरे

मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे तो भाई सो मेरा वीर मेल मिल सकी गुण कहो मेरे पाप के ले सतगुर की मत धीर जन नानक की हर आस पुजावे।

गोविंद भगत को करे सलाम, लूट लेहे सागत पद खोवे, सात जना पगमल मलत होवे, पांच पूत जने एक माए, ओत पुज खेल कर जगत विहाय, तीन गुणा के संग रच रसे, इनको छोड़

आर ब्रह्म जप सदा निहाल रखाओ। प्राप्त दयाल दूसर कोई नाही, कड़ कड़ अंतर सर्व समाही। अपने दास का हलत पलत सवार, पातत पावन प्रा बिरद तुम्हारे। अवध

नारायण साध संग नारायण बारंबार नारायण गायन बस अगोचर गुर मिल लही नारायण ओट नानक दास गही गोंड मोहल्ला पंजवा जा को राखे राखनहार इसका अंग करे निरंकार रहाओ माद गर्भ में अगना जोहे।

अहंकारी जन पल माने निंदक वेकारी गुर कै सिख सदगुरु ते आया जन उबरे निंदक नरक पाया सुन साजन मेरे मीत प्यारे सत बचन वरतै घर द्वारे जैसा करे सो तैसा पाए अवमानी की जड़ सर पर जाए नी तरिया सतगुर तर तेरी करके पारा खो जन केरी कहो नानक तिस गुर बलिहारी जा के सिमरन पैज सवारी राग गूंड बाणी।

सेवक ताज जगत स्यों सूती साधु कह ठांडी दरबार तरन तेरी मोको निस्तार सुहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी जाओ लग प्राण तऊ लग संगे नहे तचली बेग उठ नंगे सुहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर वेदे बड़े भूभत राजे हैं सिद्धे सुहागन उर्वा

अत्री ब्राह्मण सूद के वायस निरतन पाइया गणी सहंस ऐसा दीवा बाले कोय नानक सो बारंगत होय। राम करी महला पहला तुदनु निवण मनन तेरा नाव साज पेट बैसन कौताव ससन तो होय अरदास

तुम मैं मान कलाला, तुम देव उत्ते संक न मान हो, हम पुंचे सदा निहाला, हम बारक तुम पिता हमारे, तुम मुख देव हो खीरा, हम खिल है सब लाड लडाव है, तुम स गुणी गहीरा, तुम पूर्ण पूरे है संपूर्ण, हम पी संग अघाए, मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

मद बांसुरी बाजे जेवा तुन आ गाजा नृत करे कर मनुआ नाचे आने कुगर साजा राम को नृतकारी पेखे पेखन हार दयाला जेता सा सीगारी रखाओ आखार मंडली तरण सबाई ऊपर गगन चिंदोआ पनम चूला करत अकेला जल ते उपत हुआ पंच तत कर पुत्रा कीना किरत मिलावा हुआ चंद सूरज दु जरे चिरागा चौ कुंड पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर साते पिन पिन हुए पाग दिखावे सभो निरारी पाखे तार कर नृत होवे दिन राती हर कड़वा जे तूरा एक नचाव है एक पवाव है एक आए जाए हुए तूरा ओ नानक

जिसे सहाई होए भगवान अनक जतन ओ आके सरंजाम रहाओ करता राखे कीता कौन कीरी जीतो सगला पवन बेअंत महिमा।

अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोग हरख मैं दे बिरधानी सागत ए भी करत बेगानी हर का नाम अमृत कल माघे।

चलना, राज रहो तू संग सुपना रहाओ, बाल व्यवस्था बारक अंध, पर जोबन लागा दुर्गंध, तृती व्यवस्था संचे माए, बिरद पया छोड़ चलो पछताए, किरण काल पाई दुर्लभ देहे, नाम बिहूनी होई खेहे, पशु प्रेत मुदते बुरी, जिसे ना बूझे जेन ए श्री, सुन करतार गोविंद गोपाल, दीन दयाल सदा कृपाल, तुम्हें छुड़ावो छुटके बंद, बक्स मिलावो नानक जग अंध।

पटल, गुर का शब्द अमृत रस पियो, ता तेरा हो निर्मल जियो, सोधत सोधत सोध बिचारा, बिन हर भगत नहीं छुटकारा, सुहर भजन साध कै संग, मंतन रापे हर कै रंग, छोड़ सियाण प्रभो चितराई, मन बिर हर नावे जाए ना काई, दया धारी गोविंद गुसाई, हर हर नानक टेक टिकाई, राम करी महला पंजवा, संत कै संग राम रंकेल, आगे जमस्यो हुए ना मेल, अंगबुद का पया विनाश, दुर्मत होई सगली नास, राम नाम गुण

आया मोया टेढ़ो जात अभागे तय लाज नाही सुख सागर पूर्ण परमेश्वर हर न चेत्यो मन माही रखाओ अमृत कौरा बिखिया मीठी सागत की बेद नयन हो डीठी कूड़ कपट अहंकारी जाना नाम सुनत जन बिशु डसाना माया कारण सदगी चू है मान मुख कभे न उस्तत करे निरपो निरंकार दातार तिसु प्रीत न करे गवार सब सहा सिर साचा साहो वे मोहताज पूरा पाप साहो मोह मगन लपट्यो प्रम।

अपना तज अपमान दिन रैन सदा गुण गाओ पूर्ण एही सुवाओ आनंद कर संत हर जप छाड़ सियानप बोझ पराई गुर का जप मंत निर्मल हरहाओ एक की कर आस पीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उत्तर है पार देवन हार दातार अंत न पारावार जाके कर सर्ब निदान रखन हार निदान नानक पाया इहो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपे तिसकी गत होए नानक कर्म प्राप्त होए राम कली महला पंजवां दुलभ देसवार दाय ना दरगे हार हलत पलत तुद होए वडियाई अंत की बेला लय छडाई राम के गुण गाओ हलत पलत होए दोवे सुहेले अचरज पुरख तिहाओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसे सगल संताप बैरी सब होवे मीत निर्मल तेरा होवे चीत सब ते उत्तम यो कर्म सगल धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरे पार पूर्ण तेरी होवे आस जम की कटिए तेरी फास गुर का उपदेश सुनीजे नानक सुख सहज समीजे।

हर शरण मन तन हर ओई ते आया, आनंद हर रूप दिखाया। तिसी की ओर सदीव जाके किन्ने गए जीव, सिमरत हर करत निधान, रखन हार निदान। सर्व की रेण होवी जे आप।

सागर तरियो बाशर खोज, खेद न पायो नए पुनरोज। सिंध समायो कट के माघे, करण हार कहो किस अज जनाघे। जो छूटो तो जाए पयाल, जो कढ़ो तो नजर निहाल। पाप पुन हमारे वस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली मोहल्ला पंजवा, ना तन तेरा ना मन तोहे। माया मोहे बया पिया तोहे, उदम करे गाडर जो शेल। अचिंत जाल काल चक्कर पेल, हर चरण कमल सरनाए मना। राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साज तना रहाओ। ऊने काज न होत पूरे, काम क्रोध मद सदगी चूरे। करे विकार जीरे के ताई, गाफल संगनत हुआ जाई। तरत तो अनक छल जाने, कौडी कौडी को खाग सिर छाने। जिन दिया तसे न चेते मूल, मिथ्या लोभ न उतरे सूल। पार ब्रह्म जब पए दयाल, जो मन हुआ सादरवाल। हस्त कमल लड़ली नू लाए, नानक साचे सास समाए। राम कली मोहल्ला पंजवा, राजा राम की शरणाए। निरपो पए गोविंद गुण गाव, साध संग दुख जाए रघाव। जाके राम बसे मन माही, तुझन दुत्तर पेखत नाही। सगले कासवारे अपने, हर हर नाम रसनित जपने। जिसके मस्तक हाल गुर तरे, तो दास अंदेशा काहे करे। जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुर ऊपर कुर्बान। गुर परमेश्वर पेट निहाल, तो दर्शन पाए जिस होए दयाल। पार ब्रह्म जिक्र पा करे, साध संग सो पव जल तरे। अमृत पीवो साध प्यारे, मोह खूजल साते दरबारे। अंध करो ताज सगल विकार, नानक हर जप उतर हो पार। राम कली मोहल्ला पंजवा, ईंधन ते बैसंतर भाग गए। माटी को जल दह दिस जागे, ऊपर चरण तले आकाश। कड़मे सिंध की ओ परगास, ऐसा समर्थ हर जीव आप। निमकन बिसरे जी भगतन कै, आठ पैर मनता को जाप रहाओ। प्रथमे माखन पाछे दूध, मैलू कीनो साबन सूद। पय ते निरपो डरता फिरे, हुंदी कौ अणहुंदी हिरे। देही गुप्त बदेही दीसे, सगले साज कर जग दीसे। ठगन हार अनठगदा ठगे, बिन वखर फेर फिर उठ लागे। संसभा बिन करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण। ब्रह्म विचार विचारे कोय, नानक ताकी परम गद होय। राम कली मोहल्ला पंजवा, जो तुझ पावे सो थिया। सदा सदा हर की शरणाई, प्रभ नाही आन बिया। रहाओ पुत कलतर लक्ष्मी दिसे, इन में किशु न संग लिया। बिखे ठकोरी खाए पुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगूता, गर्भ जो में कृत पया। पूर्व कमाने छोड़े नाही, जम दूत ग्रास्यो महा भया। बोले झूठ कमावे अवरा, तिस न बूझे बहुत हया। असाध रोग उपजिया संदूखन, ए बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन ही साजे, आपे कीने संत जया। नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली मोहल्ला पंजवा, ऐसा पूरा गुरुदेव सहाई। जाका सिमरन तीर्था ना जाई रहाओ। दर्शन पेहत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल। चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के। जाके मस्तक राखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ। पतत उदाहरण कृपा निधान, सदा सदा जयगे कुर्बान। निर्मल मत दे जिस दान, तजे विकार बिन से अपमान। एक तिहाई के साध के संग, पा बनासे नाम कै रंग। गुर परमेश्वर सगल निवास, कट कट रब रया गुणतास। दर्श दे तारो प्रव्यास, नित नानक चितवे सच अरदास।

एक मैं सर्व सर्व मैं एका ए सगुर देख दिखाई जे किए खंड मंडल ब्रह्मंडा तो प्रभ लखन ना जाई दीपक ते दीपक परगासया तिर पवन जो दिखाई सच्चे तख्त सच महली बैठे निरपो ताड़ी लाई मोहे गया बैर।

करता तेरा सब किश है, जिस देह सो पावे सदा सिफत सदा तेरी, नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया, वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आय वसया, जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो, जिदिया ए वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित कर सुपागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कहो, से नाम हर के लागे कहे नानक तहे सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन दे निमाणी लवे बाजहो, क्या करे वेचारिया तुझ बास मरत कोए नाही, कृपा कर बनवारिया केस नौ होर थाओ नाही, शब्द लाग सवारिया।

नित नित मंगल सुनिए राम कली मोहल्ला पंजवा हर हर त्याए मना खिन नाम सारिये राम रामा राम रमा कंठ उतारिये उतार हर हर पुरख पूर्ण पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसे दुख पाव खंडनो जगदीश ईश गोपाल माधो गुण गोविंद विचारिये बिनवंत नानक मिल संग साधु दिन सरण चितारिये चरण कमल आधार जन का आसरा माल मिर्ख पंडार नाम अनंत तरा नाम नरहर निदान जिनके रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास त्यायना केल खरना ना पुने चरणा ना जमकी त्रास सारा बिन मंत नानक राज जन की चरण कमर है आसरा गुण बेंत स्वामी तेरे कोई ना जान नहीं देख चलत दयाल सुन भगत वखान नहीं जी जंत तो त्यावे पुरख पद परमेश्वरा सर्व जाचक एक दाता करना मैं जगदीशरा साधु संत सुजान सोई जिसे प्रभु जी मान नहीं बिनवंत नानक करो कृपा सोए तुझे पिछान नहीं।

राख लिगे भगत जन अपनी चरणी लाए राम, आठ पैर अपना प्रभ सिमरे एको नाम त्याए राम, त्याए सो प्रतरे पवजल रहे आमन जाना, सदा सो कल्याण कीर्तन लगा मीठा पाना, सब इश कुन्नी आस पूरी मिले सदगुर पूरिया, बिनवंत नानक प्रभ आ मेले फिर नाही दुख वसूरिया। राम कली मोहल्ला पंजवा शांत सलोक, चरण कमल शरणागति अंत मंगल गुण गाम, नान प्रभ आराधिये विपत निवारण राम शांत, प्रभ विपत निवारण सिवन अवरना कोए जियो, सदा सदा हर सिमरिये जल थल महियल सोए जियो, जल थल महियल पूर रहया एक निमक मनो ना विसरे, गुर चरण लागे दिन सफागे सर्व गुण जगदीसरे, कर सेव सेवक दिन सरैणी पावे सो होए जियो, बल जाए नानक सुखे दाते प्रकाश मनतन होए जियो। श्लोक हर सिमरत मन तन सुही बिनसी दुतिया सोच, नानक टे गोपाल की गोविंद संकट मोच, शंत पय संकट काटे नारायण दयाल जियो, हर गुण आनंद गाए प्रभ दीनानाथ प्रदपाल जियो, प्रदपाल अचुत पुरख एको तिसे स्यो रंग लागा, कर चरण मस्तक मेल लीने सदा आनंदन जागा, जियो पिंड गृहथान तिसका तन जोबन तन माल जियो, सा सदा बल जाए नानक सर्व जिया प्रतपाल जियो। श्लोक रदन उतरे हर हरे गुण गोविंद वखियान, नांग पगड़ी टेक एक परमेश्वर रखे निदान, शंत तो स्वामी प्रवरख को अंचलता के लाग जियो, बस साधु संग दयाल देव मन की मत त्याग जियो, एक ओढ़ कीजे जियो दीजे आस एक तरणी तरे, ता संगे हर नाम रंगे संसार सागर सब तरे, जन्म मरण विकार छूटे फिर ना लागे दाग जियो, बल जाए नानक पुरख पूर्ण फिर जाका सोहाग जियो। श्लोक धर्म अर्थ हर काम ओक मुक्त पदार्थ नाथ, सगल मनोरथ पूरे नानक लिखिया माथ, शंत सगल इश मेरी पुनिया मिलिया निरंजन राय जियो, अंध पयावड पागी हो गृह प्रगटे प्रभ आए जियो, गृह लाल आए पूर्व कुमाए तागी उमा क्या गणा, बेंत पूर्ण सुख सहज दाता कमन रसना गुण पणा, आपे मिलाए गए।

केलव काटन पय हरण तूसा गर हर राय दीन दयाल दुख पंजनो नानक नीत त्याय शांत जस गावोड़ पागी हो कर कृपा भगवंत जियो रुत्ती महा मूर्त कड़ी गुण उचरित सो बावंत जियो गुण रंग राते तन तेजन जिनी एक मन त्याया सफल जन्म पया तिनका जिनी सो प्रापाया ओ निदान ना तुल किरिया हर सर्व पापा हंत जियो बिनवंत नानक सिमर जीवा जन्म मरण रहंत जियो श्लोक उदम अगम अगोचरो चरण कमल नमस्कार कथनी सा तुद पावसी नानक नाम आधार संत सरण साजन परहो स्वामी सिमर अनंत तू केते हरियातिया नानक जाप भगवंत शंत रुत सरस बसंत माचेत वैसा सुख मह जियो हर जियो नहो मिलया मौलिया मंतन सह जियो कर नहो नेचल अंद सखिये चरण कमल पर भोलिया सुंदर सुगड़ सुजान बेता गुण गोविंद अमूलिया वड़पाग पाया दुख गवाया पई पूर्ण आस जियो बिनवंत नानक शरण तेरी मिटी जम की त्रास जियो श्लोक सा संत मिन प्रमोई करती कर्म अनेक कोमल बंधन बांधिया नानक कर्म है लेख जो पाने से मिलिया विछोड़े पिया नानक प्रसरणागति जाकावड़ प्रताप शंत ग्रीख मरुत अत गाकड़ी जेठ अखाड़े काम जियो प्रेम शोध दुहाग्नि दृष्ट न करी राम जियो न दृष्ट आवे मर्त हावे महागर्भ मुठिया जल बाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया कर पाप जोनी पय पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओड तेरी राग पूर्ण काम जियो श्लोक सदा लागी संग प्रीत में एक तिल रहन न जाए मन तन अंतर राव रहे नानक सह सुपाए कर गैली नी साजने जन्म जन्म के मीत चरणे दासी कर लई नानक प्रभित चीत शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कन उन उठे जल थल पूरिया मकरंद जियो प्रापुर रहिया सर्वठाई हर नाम नावनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी और समूहा सब करे प्रे रंग जागे न छिद्र लागे किरपाल साधक सिंध जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो श्लोक आस प्यासी मैं फिरो ता पेखो गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रा मेलन हार बिन मिलबे सांत न उपजे तेल पाल रहन न जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए शंत रुत सरद अडम्बरो असूकत के घर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत का मिल गए गुण तस जियो बिन कंत प्यारे न सूख सारे हार कंगन त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती साध बिन जैसे तना ईत पुत दैदस अलोकन मन मिलन कीपा प्यास जियो बिन वंत नानक तार कृपा मिल हो प्रा गुण तस जियो श्लोक जलम जी शीतल पय मन तन उपजी सा।

मन जा गोटी सत संतोख संजमख नाल नानक गुरमुख नाम समाल कमन सो गुप्ता कमन सो मुक्ता कमन सो अंतर बहार जुगता कमन सो आवे कमन सो जाए कमन सो तिरफम रहा समाए घड़ घड़ गुप्ता गुरमुख मुक्ता अंतर बहार शब्द सो जुगता मन मुख बिन से आवे जाए नानक गुरमुख सा समाए क्यों कर बादा सरपन खद क्यों कर खोया क्यों कर लादा क्यों कर निर्मल क्यों कर अंधियारा क्यों तत् विचार ऐसो गुरु हमारा दुर्मत बादा सरपन खद मनमुख खोया गुरमुख लादा सतगुर मिले अंधेरा जाए नानक हो में मेड़ समाए सोन निरंतर दी दे बंद उड़े न हंसा पड़े न कंध सहज गोबा कर जाने साचा नानक साचे पावे साचा किस कारण गृह तर उदासी किस कारण ओ पेख निवासी किस वखर के तुम मन जारे क्यों कर साथ लंघावो पारे गुरमुख खोज पे उदासी दर्शन के ताई पेख निवासी साज वखर के हम मन जारे नानक गुरमुख उतरस पारे केत बिद पुरखा जन्म मटाया काहे कौ तुझ इहो मन लाया केत बिद आसा मन साखाई केत बिद जोत नर

कथियले सुन कहां कर वासो ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले घट घट कमन निवासो काल का ठीका क्यों जिलाईले क्यों निरभो कर जाइए सहे संतु का आसन जाने क्यों शेदे बैराइये गुर के शब्द होमे बिख मारे ता निरकर हो गए वासो जिन रच रचिया तेस शब्द पछाण नानकता का दासो कहां ते आवे कहां यो जावे कहां यो रहे सुमाई एस शब्द को जो

ला सब तीर्थ गह ओ तपा कैसे परमगत लह गुर प्रसादी को सच कमावे नानक सो तपा मोखंतर पावे महला तीजा सो तपा ये ओ तप का ले सदगुर नु मिले शब्द समाले सदगुर की सेवा यो तप प्रवान नानक सो तपा दरगह पावे मान पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमती कट चानना आनेर बिनासन हुक्मे ही सब साजियन रव्यासा वण त्रेण सब कुछ आपे आप है गुरमुख सदा हर पान सब देखी सोजी पई सच्चे आप बुझाई वाहो वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जिनके चित में परम ते दे दिते नानका ते हो जेगा तर्म आपए निरंजन परम पद ताका भूखा होए जिसका पूजन नानका विरला पाए कोए महला तीजा अभ्यागत ए न आखियन जे पढ़ कर पूजन करें उदरे कारण अपने बैले पेह करेन अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौन करेन पाल लहन सो अपना निरकर रहन करेन पौड़ी अंबर तरत बिछोड़ेन वे सच्चा असराओ घर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वर्तदा गुरमुख सच सुनाओ सच्चा आप तगत सच्चा बय सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वर्तदा गुरमुख अलख लखाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा रैनायर माय अनंत है ऊड़ी आवे जाए भाणे चले अपने बहुती लय सजाए राय नायर में सब किस है कर्मी पल्ले पाए नानक नौनद पाई है जे चले तसे रजाए महला तीजा है जे सतगुर ना सेवे हो विच होमे जन्म विनाश रसना हरसना चखे हो कमल न होयो परगास बिख खादी मन मुख मोआ माया मोहे विनाश एक सहर के नाम वेण त्रिग जीवन त्रिगवास जा आपे नदर करे पर सच्चा ता हो वेदा सुनदास ता अनदन सेवा करे सदगुरु की कभे न छोड़े पास जो जल में कमल अलिप तो वर्त है त्यो विचे गिरे उदास जन नान करे कराया सबको क्यों पावे ते भर गुण तास पौड़ी छत्ती जुग गुबार सा आपे ग्रंथ कीनी आपे सृट सब साजियन आप मत दीनी सिमरत सास्त साजियन पाप पुन गणत गणीनी जिस बुझाए सो बुझसी सच्चे शब्द पतीनी तब आपे आप वर्तदा आपे बगस मिलाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा यो तन सबो रत है रत बिन तन न होए जो से रते अपने तेन तन लोभ रत न होए पए पए तन खीन होए लोभ रत विचों जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होए त्यों हरका पाओ दुर्मत मैल गवाए नानक तेजन सोने जो रते हारंग लाए महला तीजा राम कली रामन वसया ता बनया सीगार गुर के शब्द कमल बिरसया ता सौंपया भगत पंडार परम गया ता जा गया चूका अज्ञान अंधार तेसनु रूप अत अगला जिस घर नाल प्यार सदा रवे तेरे अपना तोबा बंती नार मनमुख सीगार ना जाननी जसन जन्म सवहार
फिर घर भक्ति सीगार कर नित जम्मे हुए खुवार सह सारे विच सोभ ना पाए नी अगे जे करे तो जाने करतार नानक सच्चा एक है दो बच गए संसार चंगे मंदे आप लायन सो करन जे आप कराए करतार महला तीजा बिन सतगुर सेवे साथ न आवई दूजी ना ही जाए जे बो तेरा लोचिए बिन कर्मा पाया ना जाए अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए तिन जम्मन मरण ना चुकई होमे विच दुख पाए जिनी सतगुर सिउ चित लाया सो खाली कोई ना है तिन जम की तलब ना हो गई ना ओए दुख सुखा है नानक गुरमुख उबरे सच्चे शब्द समागे पौड़ी आप अलिप्त सदा रहे होर तंदे सब ताव है आप निचल अचल है होर आव है जाव है सदा सदा घर त्याई है गुरमुख सुख पाव है निकरवासा पाई है सच सिफत समाव है सच्चा गैर गंभीर है गुर शब्द बुझाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई श्लोक महला तीजा सच्चा नाम ते आए तू खबो वरते सच।

समाए काहे भिख्या मंगण जाए पौड़ी हर मंदर सोई आखिए जिथों हर जाता मान दे गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता बार मूल ना खोजिए कर माए विधाता मनमुख हर मंदर की सार ना जाननी तिनी जन्म गवाता सब में एक वर्तदा गुरसवधी पाया जाई वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लक्षण है क्या मूर्ख का करना मूर्ख हो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एत कमाने सदा दुख दुख ही मैं रहना अत प्यारा पवे खूह क्यों संजम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना हर नाम जपे आप उधरे ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जोत पावे सो करे जो दे सो सहना महला पहला नानक आखे रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पोसन आकिया बाकी जिना रही अजराई।

सुंदर बचन तुम सुनो शबीली, फिर तेड़ा मन साधारण, दुर्जन से ती निहो रचायो, दस विखा मैं कारण, ऊनी नाही चूनी नाही, नाही किसे विहूनी, फिर शहर शपीला छड गवायो, दुर्मल कर्म विहूनी, ना हो फुली ना हो चुकी, ना मैं नाही दूसा, जित हो लाई तित हो लगी, तू सुन सच संदेशा, साई सुहागण साई भागण, जय फिर कृपा तारी, फिर अवगुण के सब गवाए, गल से ती लाए सवारी, कर्महीन तन करे बेनंती, कद नानक आवे वारी, अब सुहागण माणे रलियां, एक देव रात मुरारी, महला पंजवां, ताहि मन तू डोलता, हर मनसा पूर्ण हार, सतगुर पुरख ते आए तू, सब दुख वसारण हार, हर नामा आराध मन, सब किल विख जाए विकार, जिन को पूर्व लिखिया,

पावे। सिख हंस सरवर इकट्ठे होए, सतगुर कै हुकम आवे। रदन पदार्थ माणक सरवर पर पूरे, खाए खर्चरे तोट न आवे। सरवर हंस दूर न होई, करते एवे पावे। जन नानक जिसदे मस्तक भाग तुर लिखिया, सो सिख गुरु पै आवे। आप तरिया कुटम सब तारे, सबा सिरट छिडावे। महला पंजवां, पंडित आखाए बहुती राही, कोरड़।

मन तन हिरदे सिमर हर, आड़ पैर गुण गाओ, उपदेश सुनो तुम गुर सिखो, सच्चा ए सुआओ। जन पदार्थ सबर होए, मन में लायो पाओ, सूग सहज आनंद कणा, प्रभ जपत्या दुख जाए। नानक नाम जपत सुख उपजे।

फेर फिराहर सदगुर संग दिखाया जाहर जन नानक सच्चे सच समाहर महला पंजवां आहार सब करदा फिरे आहार एक ना होए नानक जित आहार जग उधर है विरला बूझे कोए पौड़ी वड्डियों वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक।

गोविंद हम ऐसे अपराधी जिन पर जियो पिंड था दिया इसकी भाव भगत नहीं साधी रहा पर तन पर तन पर ती निंदा पर अपवाद ना छूटे आवागमन होत है फुन फुन यो प्रसंग न टूटे जे कर कथा होत हर संतन एक निमखना की नो मैं फेरा लंपड़ चोर दूत मतवारे तीन संग सदा बसेरा काम क्रोध माया मद मस्तर ए संपे मो माही दया धर्म अर गुर की सेवा ए सुपनं तरनाही दीन दयाल के पाल दमुदर भगत बछल पैहारी कहत कबीर पीर जन रखो हर सेवा करो तुम्हारी जे सिमरन

राखी अले मन राम नामा बेदी अले जैसे कनक कला चित मांडी अले रघाव आनी ले कुंभ पराई ले उदक राजकुवार पुरंदरीये हस्त विनोद विचार करती है चीत सोगा गर राखी अले मंदर एक द्वार जा जाके गऊ चिरावन छाडी अले पांच कोस पर गऊ चिरावत

ऐसो दान नित नित है कीजे, आत्म जो निर्मायल कीजे, आप बराबर कंचन दीजे, राम नाम सर तऊ न पूजे, मने न कीजे रोस, जमे न दीजे दोस, निर्मल निर्वाण पद कीन लीजे, जस रस राय नंद, राजा मेरा राम चंद, परम में नामा तत् रस अमृत पीजे, राम कली बाणी सर्वदास जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपो पाओ न दरस, लोहा कंचन हिरन हुए कैसे, जो पारस है ना परस, देव संसे गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मस्तर, इन पंचो मिल लूटे रगा, हम बड़ कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एवद कभे ना नासी, कौरव दास सबे नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मुए आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे, राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद इड़ा पिंगला और सुखमना, तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तय प्राग, मन मज्जन करे तताई, संतो तहा नरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोय, तहा नरंजन रमैया होए रगाओ, देव सताने क्या निशानी, ते बाजे शब्द अनाहद बाणी, ते चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी, उपजे ज्ञान दुरमत शीजे, अमृत रस गगनंतर पीजे, इस कला जो जाने पेओ, पेटे ताश परम गुरदेव, दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की काटी, ऊपर हाट हाड पर आला, आले पीतर दाती, जागत रहे सो कभू ना सोवे, तीन तिलोक समाध पलोवे, बीज मंत्र ले हृदय रहे, मनुआ उल्ट सुन में गह, जागत रहे ना अलिया पाखे, पांचों इंद्री बस

प्रस्वामी तुम दुष्ट तारे हरण के नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर राम रंगे हर हर कृपा करी जगदीशर हर त्यायो।

तुमरे गुण प्रभु कह न सके हम तुम वड वड पुरख वडगे जन नानक को दया प्रवतार हो हम सेवो तुम जन पगे नट मोहल्ला चौथा मेरे मान जप हर हर नाम मने जगन्नाथ कृपा प्रतारी मत गुरमत नाम बने रघाओ हर जन हर जस हर हर गायो उपदेश गुरु गुर सुने केल भग पाप नाम हर काटे जिव खेत किसान लुने तुमरी उपमा तुम ही प्रभु जान हो हम कह न सके हर गुने जैसे तुम तैसे प्रभु तुम ही गुण जानो प्रभु अपने माया फास बंद बो बंदे हर जप्यो खुल खुलने ज्यो जल कुंचर तनुवे बंदेओ हर चेत्यो मोख मुखने स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने तुमरी था पाई नहीं पावे जन नानक के प्रवडने नट महला चौथा मेरे मान कल कीर्त हर प्रवणे हर हर दयाल दया प्रतारी लग सतगुर हर जपने रगाओ हर तुम वड अगम अगोचर स्वामी सब त्यावे हर उड़ने जिनको तुमरे वड कटाख है ते गुरमुख हर सिमरने ए प्रपंच किया प्रस्वामी साब जग जीवन जुगने ज्यो सलल है सरल उठे बहुलहरी मिल सलल है सलल समणे जो प्रो किया सो तुम ही जान हो हम न जानी घर गहने हम बारक कहो विपुस्त तारो हम करे प्रभु सिमरणे तुम जलनिध हर मान सरोवर।

साधु तूर करो नित मजन सब केलबख पाप गवायन पूर्ण पूर रहे कृपा निध काट काट दिष्ट सुमायन जाप ताप कोट लख पूजा हर सिमरन तुलना लायन दोय कर जोड़ नानक दान मांगे तेरे दसन दास दसायन नट महला पंजवा मेरे सर्वस नाम निधान।

सतगुर ज्ञान मज्जन गय नीको मिल कल मल पाप उतारे रघाओ। संगत का गुण बहुत अधकाई परसुआ गण उधारे परस निपरस भय कुबजा कहो लय बैकुंठ सुधारे।

सुनावे जो बोले सो ना बिचारे। सत संगत मिले ता दृढ़ता आवे हर राम नाम निस्तारे। जब लग जियो पिंड गए साबत तबला किशना संहारे। जब कर मंदर आग लगानी कर कूप कडे पनगारे। सागत सिउ मन मेल ना करियो जिन हर हर नाम बिसारे। सागत बचन बिछुआ जो डसिए तज सागत पर परारे। लग लग प्रीत बहु प्रीत लगाई लग साधु संग सवारे। गुर के बचन सत सत कर माने मेरे ठाकुर बहुत प्यारे। पूर्व जन्म परचून कमाए हार हार हर नाम प्यारे। गुर प्रसाद।

साधु पुरख साध जन पाए, एक बिनो करो गुर प्यारे, राम नाम तन पूंजी देवो सब तृष्णा पूख निवारे। पते पतंग मृग प्रिंग कुंचर मीन, एक इंद्री पकर संघारे, पंच पूत सब लगे देही गुर सतगुर पाप निवारे। शास्त्र वेद सोध सोध देखे, मुन नारद बचन पुकारे, राम नाम पढ़ो गद पावो सत संगत गुर निस्तारे। प्रीतम प्रीत लगी प्रभ केरी, जिव सूरज कमल निहारे, मेर सुमेर मोर बो नाचे, जब उनमें कान कन हारे। सागत को अमृत बो सिंचो, सब डाल फूल विस्कारे, ज्यो ज्यो निवे सागत नर सेती, छेड़ छेड़ कड्डे बिखारे। संतन संत साध मिल रही है, गुण बोले परे पुकारे, संत संत मिले मन विसे, जो जल मिल कमल सवारे। लोभ लहर सब स्वान खलक है, हलक्यो सबे बिगारे, मेरे ठाकुर कह दीवान खबर होई, गुर ज्ञान खड़ग लय मारे। राख राख राख प्रा मेरे, मैं राखो कृपा तारे, नानक मैं तर अवर न काई, मैं सतगुर गुर निस्तारे। छक्का एक राग माली गौड़ा महला चौथा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह पंग। गुर प्रसाद अनक जदन कर रहे, हर अंत नहीं पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश।

प्रहलाद जन हर नाग पकड़िया, हर रख लियो तराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया। ओ जन्म मर निवार ठाकुर हर गुरमति प्रपाया, हर पतत पावन नाम स्वामी।

जप मन राम नाम सुखदाता सत संगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रखाओ वडभागी गुर दर्शन पाया गुर मिले घर प्रवजाता गुरमत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता तन तन साध जिनी घर प्रापाय तिन पूछो घर की बाता पाए लगो निद करो जुदरिया हर मिल लो कर्म वेदाता लिलाड़ लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मन तन राता हर प्र आए मिले सुख पाया सब केलभ पाप गवाता राम रसायन जिन गुरमत पाया तिनकी उत्तम बाता तिनकी पंख पाये वडभागी जन नानक चरण पराता माली गौड़ा मोहल्ला चौथा सब सिद्ध साधक मुनजना मन पावनी घर त्यायो अपरम्परो पार ब्रह्म स्वामी हर अलख गुरु लखायो रहाओ हम नीच मध्यम कर्म किए नहीं चेत्यो हर रायो हरियान में लियो सदगुरु खिन बंद मुक्त करायो प्रा मस्त के तुर लिखिया गुरमति घर लिवलायो पंच शब्द दर गए बाजिया हर मिलो मंगल गायो पतत पावन नाम नर घर मंद भागिया नहीं पायो ते गर्भ जो नी गालिये ज्यो डोन जरे गलायो मत दे घर प्रगम ठाकुर गुर चरण मन में लायो हर राम नाम में रहो लागो जन नानक नाम समायो माली गौड़ा मोहल्ला चौथा मेरा मन राम नाम रस लागा कमल प्रगास पया गुर पाया हर जप्यो परम्पो भागा रगाओ पय पाए भगत लागो मेरा हीरा मन सोयो गुरमत जागा किल बिख खीन पय सांत आई हर उतारियो वड भागा मान मुख रंग कसुंभ है कछुआ ज्यो कुसुम चार दिन चागा खिन मैं बिनस जाए पर ताप दंड तरमरा एका लागा सत संगत प्रीत साध अत गूढ़ी जो रंग मजीठ बो लागा ताया कापर चीर बो फारे हार रंग न लहे सपागा हर चारो रंग मिले गुर शोभा हार रंग चलू ले रंगा जन नानक तिनके चरण पखारे जो हर चरणी जन लागा माली गौड़ा मोहल्ला चौथा मेरे मान भाज हर घर नाम गोपाला मेरा मातन लीन पया राम नामे मत गुरमत राम रसाला रहाओ गुरमत नाम त्यागे हर घर मन जपगे घर जपमाला जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनमा।

देवो कटकाट हर साजन मिलियो गुरपुर गुर बचन बिकानो हट हाट मकर प्राग दान बो किया शरीर दियो अधकाट बिन हर नाम को मुक्त न पावे बो कंचन दीजे कटकाट हर कीर्त गुरमत जस गायो मन उगरे कपट कपाट त्रिवटी फोर परम पौ पागा लय पानी मटकी माट कल युग गुरपुरा तिन पाया जिन तुर मस्तक लिखे लिलाट जन नानक रस अमृत पिया सवला थी पूग तिखाट छक्का एक माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद रे मन टहल हर सुखसार अवर टहलां झूठियां निर करे जम सिर मार रघाओ जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार संसार पौ जल तारिया हर संत पुरख अपार नित चरण सेवो साध के तज लोभ मोह बेकार सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार एक परम फूले सागता बिन गुर अंध अंधार तुर हो ना सो होया को ना मेटन हार अगम रूप गोविंद का अनक नाम अपार तन तन ते जन नानका जिन घर नामा उतार माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा राम नाम को नमस्कार जास जबत होवत उधार रहाओ जाके सिमरन मिटे तंद जाके सिमरन छूटे बंद जाके सिमरन मूर्ख चतर जाके सिमरन कुले उधर जाके सिमरन पौ दुख हरे जाके सिमरन अबदा टरे जाके सिमरन मुजद पाप जाके सिमरन नहीं संताप जाके सिमरन हृदय विगास जाके सिमरन कवलादास जाके सिमरन निध निधान जाके सिमरन तरे निदान पतत पावन नाम हरी ओड भगत उधार करी हर दास दासा दीन शरण नानक माथा संत चरण माली गौड़ा मोहल्ला पंजवा ऐसो सहाई हर को नाम साध संगत परिपूर्ण काम रघाओ बूढ़ को जैसे बेड़ी मिलत बूझत दीवक मिलत तिलत जलत अग्नि मिलत नीर।

प्रसाद हर समर्थ की सरना जीव पिंड तनरास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाइये जीवने का मूल रब रया सरबत।

कोय। पूरे या सगल मंडल एक स्वामी सोय। कर्ण हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ। बलिहार जाए सदा नानक देव अपना नाओ। माली गौड़ा बाणी भगत नाम देव जी की। एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तन तन ओ राम बीन बाजे। मदर मदर तुन अनहत गाजे। रहाओ तन तन मेघा रोमावली। तन तन किसन ओढ़े काम।

मेरो बाप माधो तू तन केसो सामलियो बीठ लाए रखाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गृहस्थी के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी अले गोतमनार हल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अधम अजात नाम देव तौ शरणागत आई अले सबे कट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रघाओ एकल माटी कुंचर चीटी भाजन गए बो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घटकट राम समाना रे एकल चिंता राख अनंता और तजो सवया सारे परमे नामा पहने कामा को ठाकुर को दसारे राग मारू महला पहला कर पहला चौप दे एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपंग गुर प्रसाद श्लोक साजन तेरे चरण की होए रखा सतूर नानक शरण तुहारिया।

तेरा नाम ते आया तिनको सद मिले। बाबा मैं कर्महीन कूड़ियार नाम न पाया तेरा, अंधा परम फूला मन मेरा रखाव। साध कीते दुख पर फोड़े पूर्व लिखे माए, सो थोड़े दुख अगले दुखे दुख विखाए। विछड़िया का क्या विछड़े मिलिया का क्या मेल, साहेब सो साल आईये जिन कर देखिया खेल। संजोगी में लावड़ा इन तन कीते पोग, वेजोगी में विछड़े नानक पी संजोग। मारू महला पहला मिल मात पिता पिंड कमाया, तिन करते लिख लखाया लिख दात जोत वड़ियाई। मिल माया सुरत गवाई मूर्ख मान ताहे कर से माना, उठ चलना खस में पाना रहाओ। ताज साध सहज सुख होई कर छड़ने रहे न कोई, किस खाजे किस तर जाइए ते भावड़ दुनिया आइए। सदकाया पट हंडाए फुरमायस बहुत चलाए, कर से सुखाली सोवे हथी पौंदी काहे रोवे। कर कुमन वाणी पाई पा पत्थर तरन न जाई, बहु बेड़ा जी हो चढ़ाऊ कहो नानक देवे काहू। मारू महला पहला कर पहला करनी कागद मन मसवाणी, बुरा पला दुए लेख पाए ज्यों ज्यों किरत चलाए। त्यों चलिए तौ गुण नाही अंत हरे चित।

सब नगरी में एको राजा सबे पवित्र है थावा बाबा देवसा सच गावा जाते सहजे सहज समावा रघाव बुरा परा किस आपस ते जाने ए सगल विकारा यो फरमाया खजम का हुआ वरत यो संसारा इंद्री तात सबल कहित है इंद्री किसते हुई आपे खेल करे सब करता ऐसा बूझे कोई गुर प्रसादी एक लिव लागी दुबदा तदे बेनासी जुत्स पाना सो सतकर मानिया काटी जमकी फासी पंत नानक लेखा मांगे कवना या चूके मन अवमाना।

एक सच्चा सब सेम दी तुर भाग मिला भाग होए। गुरमुख मेरे से ना विछड़े पावे सच सोए। एक भगती सार ना जाननी मनमुख परम भुलाए। ओ ना मितिया पवर्तदा करना किशु ना जाए। जिस नाल जोर ना चलई खले कीचे अरदास। नानक गुरमुख नाम मन वसे ता सुन करे साबास। मारू महला तीजा मारू ते सीतल करे मनुरहो कंचन होए। सो सच्चा सालाइए तिस जेवड़ अवर ना।

पूरे नाम दृढ़ाय हर तीर्थ हर सबास रखाओ हर घर आप मिलाए गुर मैं दस्ते हर तन रास बिन गुर प्रेम न लभई जन वेखो मन रिजास हर गुर विते आप रखे हर मिले गुर साबास सागर भगत पंडार हर पूरे सदगुर पास सगुर तुठा खोल दे मुख गुरमुख कर परगास मनमुख पाग विहूणिया तिख मुइया कंधी पास गुरदाता दाता रहे ओ मांगो दान गुर पास किरीम चुन्ना मेल प्रभ मैं मनतन वडड़ी आस गुर पावे सुन बेनती जन नानक की अरदास मारू महला चौथा हर हर कथा सुनाए प्रभ गुरमुख हर दे समाणी जप हर हर कथा वडभागिया है उत्तम पद निर्वाणी गुरमुखा मन प्रतीत है गुर पूरे नाम समाणी मन मेरे मैं हर हर कथा मन पाणी हर हर कथा निसदा कर गुरमुख अकथ कहानी ही रखाओ मैं मन तन खोज ठंडोलिया क्यों पाईए अकथ कहानी संत जिना मिल पाया सुन अकथ कथा मन पाणी मेरे मन तन नाम आधार हर मैं मिले पुरख सुजानी गुर पुरखे पुरख मिलाए प्रभ मिल सुरती सुरत समाणी वडभागी गुर सेवया हर पाया सुगड़ सुजानी मनमुख पाग विहूणिया तिन दुखी रहन विखाणी हम जाचक दीन प्रो तेरे मुख दीजे अमृत बाणी सतगुर मेरा मित्र प्रभ हर मिलो सुगड़ सुजानी जन नानक शरणागति हर कृपा नाम समाणी मारू महला चौथा हर पाओ लगा बैरागिया वडभागी हर मन राख मेरे संगत सरदा उपजे गुर सबदी हर चाख साब मन तन हरिया होया गुरबाणी हर गुण पाख।

असाध रोग उपजो तन पीतर तर तन काहू टारियो प्रा बिसत महा दुख पायो यो नानक तत विचारियो मारू महला पंजवा चरण कम प्रवरा खे चीत हर गुण गावे नीता नीत इस बिन दूजा अवर न को आद मद अंत है सो संतन की ओट आपे आप रहाओ जाके वस है सगल संसार आपे आप आप निरंकार नानक गए साचा सोए सुख पाया फिर।

मन नहीं हर हर गावा, हरख सोग लोभ मोह रहत है, निर्मल हर के संता, तिनकी तूड़ पाए मन मेरा, या दया करे भगवंता, कहो नानक गुर पूरा मिले, ता उतरी मन की चिंता, मेरा अंतर जामी हर राया, सब के जाने मेरे जी का प्रीतम, बिसर गए बक बाया, हरहाओ दूजा। मारू महला पंजवां, कोट लाख सर्व

संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पास करो कृपा मुराद माधो सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवा कार सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद संयोग वियोग तुरो हुई हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमाएड़े जी देही विच जीव आए पया जिथे अगन पगे पड़हारे ऊर्द मुख महा गोबारे सास सास समाले सोई उथे खसम छड़ाए लाया विचों गर्भे निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवे जाए पुआईए जूनी रहन न कित ही थाए पया।

माया कीमत जन्म सरायो, आराम भजन नहीं लागे ओ रखाओ। जम को डांड परे उसरी ऊपर, तब सोवत तय जागे हो, ता हो आपके पछताए, झूठ तो नाहन पागे हो। ए चिंता उपजी घट मैं, जब गुर चरणन अनरागे हो, सोफल जन्म नानक तब हुआ, जो प्रभु जस मैं पागे हो। मारू अष्टपदिया महला पहला, कार पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद वेद पुराण कथे सुने, हारे मुनि अनेका अड़सठ तीर्थ बहु कणा, प्रम था के पेखा, साचो साहिब निर्मलो।

को कछ नहीं, गुरपूरे पूरी मत कीन रहाओ। अवगुण सुबर गुण नहीं, बिन गुण क्यों कर जाओ। सहज सब सुख उपजे, बिन भागा तन नाहे। जिनके नाम ना मन बसे, से बादे दुख सहाहे। जिन्ही नाम सारिया, ते किताए संसार। आगे पासे सुख नहीं, गाडे लादे शार। विछड़िया मेला नहीं, तू कणु जमद्वार। अगे क्या जाना नाहे, मैं भूले तू समझाए। भूले मार

प्रेम होया। जेवा ससाध बिन रावे को रस नहीं, होर चले बिखलाद ऐसा लाला मेरे लाल को, सुन खसम हमारे क्यों परमावे त्यों चला। सच लाल प्यारे अरहाओ अंदन लाले चाकरी, गोले सिर मीरा गुर बचनी मन वेत्या, शब्द मन तीरा गुर पूरे सावास है, काटे मन पीरा लाला गोला तनी को, क्या कहो बड़े आई है भाणे बक्से पूरा तनी। सच कार कमाइए विछड़िया को मेल लय, गुर को बल जाइए लाले गोले मत खरी, गुर की मत निकी ताती सुरत सुहावनी, मानमुख मत फीकी मन तन तेरा तू प्रभु, सज तीरक तुरकी सचे बैसन उठना, सच भोजन भाख्या चित सचे वितो सचा, साचा रह चाख्या साचे घर साचे रखे, गुर बचन सुपाख्या मनमुख आलस घणो, फाथे उजाड़ी पाथा चुगे न चोगड़ी, लाग बंद बिगाड़ी गुर प्रसादी मुक्त होए, साचे ने ताड़ी अनहत लाला बिदया प्रभगेत प्यारी, बिन साचे जियो जल बलो झूठे वेकारी, बाद कारा सब छोड़िया साची तरतारी, जिन्नी नाम सारिया

कर प्रगास प्रचंड प्रगटेओ अंधकार विनाश पवित्र अपवित्र है करण लागे मनना पयो विखात सीत मंद सुगंध चलेओ सर्वथान समान जहां साक्ष तहां लागेओ तिल ना संका मान तो पाए अपाए जो निवटे आवे सीत ताका जाए आ पर का कछ ना जाने सदा सहज सुपाए चरण सरण सनात त्यो मान।